तो हमने उन पर तूफान और टिड्डियां और जुएं और मेंढक और खून कितनी खुली हुई निशानियां भेजी, मगर वो तकब्बुर ही करते रहे और वो लोग थे ही गुनाहगार।

और जब उनमें से एक जमात ने कहा कि तुम ऐसे लोगों को क्यों नसीहत करते हो जिनको खुदा हलाक करने वाला या सख्त अजाब देने वाला है, तो उन्होंने कहा इसलिए कि तुम्हारे परवरदिगार के सामने माजरत कर सकें, और अजब नहीं कि वो परहेजगारी इख्तियार करें।

और जब हमने उनके सरों पर पहाड़ उठा खड़ा किया गोया वो सायबान था, और उन्होंने ख्याल किया कि वो उन पर गिरता है, तो हमने कहा कि जो हमने तुम्हें दिया है उसे जोर से पकड़े रहो और जो इसमें लिखा है उस पर अमल करो ताकि बच जाओ।

वो खुदा ही तो है जिसने तुमको एक शख्स से पैदा किया और उससे उसका जोड़ा बनाया ताकि उससे राहत हासिल करे। सो जब वो उसके पास जाता है तो उसे हल्का सा हमल रह जाता है और वो उसके साथ चलती फिरती है। फिर जब कुछ बोझ मालूम करती यानी बच्चा पेट में बड़ा होता है तो दोनों मियां बीवी अपने परवरदिगार खुदाए अज़्ज़ुजल से इल्तजा करते हैं कि अगर तू हमें सही व सालिम बच्चा देगा तो हम तेरे शुक्रगुजार होंगे।

अगर तुम उनको सीधे रस्ते की तरफ बुलाओ तो तुम्हारा कहा न माने। तुम्हारे लिए बराबर है कि तुम उनको बुलाओ या चुपके हो रहो।

और जब तुम उनके पास कुछ दिनों तक कोई आयत नहीं लाते तो कहते हैं कि तुमने अपनी तरफ से क्यों नहीं बना ली। कह दो कि मैं तो उसी हुक्म की पैरवी करता हूं जो मेरे परवरदिगार की तरफ से मेरे पास आता है। ये कुरान तुम्हारे परवरदिगार की जानिब से दानिशो बसीरत और मोमिनों के लिए हिदायत और रहमत है।

0: Sufi sings who? That which is, that which was, that which will be.
1: مسلمانی که داند رمز دین را نساید پیش غیر الله جبین را اگر گردون به کام او نگردد به کام خود بگرداند زمین را این رادیو FM 92.6 است بشنوید جهان UCP
2: ایک نیا انداز
3: ایک نئی سوچ
2: एक नई पहचान
3: एक नई लगन
2: यूसीपी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान
3: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिबे इल्म के किरदार से
2: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की मालूमात की और बहस व तकरार हो आने वाले वक्त की
3: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में यूसीपी नंबर वन
2: जब मिलती है लगन
3: मेहनत
2: कामयाबी और खुलूस
3: तो बनती है
2: यूसीपी की दुनिया
3: आप सुन रहे हैं FM 92.6
2: सुनते रहिए

ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

सुरौरताल सुरौरताल ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास सिर्फ FM 92.6 UCB की दुनिया।

0: ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, एफएम 92.6।
1: मट्टी का है बाबा तू, तेरी किस्मत एक सफर।

ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

0: आप सुन रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब FM 92.6 UCB की दुनिया।
1: अस्सलामुअलैकुम सामईन, आप सुन रहे हैं FM 92.6 UCP की दुनिया और मैं हूं आपका मेज़बान हमज़ा अहमद रज़ा। मीडिया एंड मैस कम्युनिकेशन फैकल्टी आर में आज हमारे प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करेंगे हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट मीडिया एंड मैस कम्युनिकेशन डॉक्टर आतिफ अशरफ साहब। सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और आज के इस प्रोग्राम में सर से हम बात करेंगे कि सहाफ़त क्या होती है, जर्नलिज्म बेसिकली है क्या, और बहुत वसी तजर्बा रखते हैं सर मीडिया के अंदर, और उन सर से जानते हैं कि सर सबसे पहले तो ये बता दीजिएगा कि जर्नलिज्म क्या होती है, सहाफ़त कहते किसे हैं।
2: जी बहुत शुक्रिया हमज़ा। जर्नलिज्म या सहाफ़त जो है बेसिकली एक पब्लिक सर्विस है और इसका जो बुनियादी मकसद है वो ये है कि मुआशरे में अगर कुछ बुरा हो रहा है तो बुरा होने से पहले पहले विसल ब्लो की जाए, ढोल बजाया जाए और पॉलिसी मेकर्स को जो आपके जो मुक्तदरा है जो कि आपकी स्टेट के फैसले करती है उस तक बात पहुंचाई जाए, आवाम की बात पहुंचाई जाए। और बेसिकली जर्नलिज्म जो है, सहाफत जो है, एक पुल का काम करती है आवाम और हुकूमत के दरमियान, ताकि ऐसा कोई मिसहैप, ऐसा कोई हादसा जो एक सहाफी समझता है कि हो सकता है, उस हादसे से पहले पहले प्रिकॉशनरी मेजर्स लेके उसको बचाया जा सके, ऑडिट किया जा सके, अकाउंटेबिलिटी की जा सके, और जो मुआशरे में गलत चीजें हो रही हैं, स्टेट के अंदर इदारों में हो रही हैं, मुआशरती लेवल पे हो रही हैं, समाजी लेवल पे हो रही हैं, उनको हाईलाइट किया जाए और उनके तदारुक के लिए आवाज़ बुलंद की जाए। तो सहाफत एक अजीम शोबा है जिसका मकसद ही एक, जिस तरह कुछ लोग कहते हैं ये पैगंबरी शोबा है,
1: बिल्कुल इसी तरह सुना,
2: जिस तरह आप तबलीग करते हैं, एक अच्छे काम की तरफ लोगों को लेके आते हैं, इसी तरह आपने मोबिलाइज करना है, अवेयर करना है, एजुकेट करना है, इन्फॉर्म करना है मैसेज को, और उन मैसेज की जो आवाज़ है, जो खलके जो कहते हैं ना कि जो आवाज़ खल्क है, उसको आपने पहुँचाना है मुक्तदरा तक, ताकि जो प्रॉब्लम्स हैं सोसाइटी के, उनके अपने प्रॉब्लम्स, उनको एड्रेस किया जा सके।
1: बिल्कुल, जो अपनी आवाज़ खुद नहीं बन सकते उनकी आवाज़ बनने का नाम है सहाफ़त मीडिया के अंदर। और सर, आजकल की जो नौजवान नस्ल है वो इस चीज़ में इतना इंटरेस्ट शायद नहीं ले रही मीडिया में, या शायद कहती कि इसका स्कोप नहीं है, या आप इस चीज़ को एलेबरेट कीजिएगा कि कितना स्कोप है और आजकल की नौजवान को अवेयर होना, इन्फॉर्म होना कितना ज़रूरी है मीडिया से खास तौर पर।
2: देखिए, जर्नलिज्म जो है ना बेसिकली ये सिर्फ हालात हाजरा की रिपोर्ट करना नहीं है, जर्नलिज्म इज ऑल अबाउट इन्वेस्टिगेशन। जो कुछ दुनिया में हो रहा है उसको रिपोर्ट करना आजकल वो जर्नलिज्म तो बहुत ही बेसिक लेवल पे जर्नलिज्म है, जो आजकल हर यूजर सोशल मीडिया का वो अपनी अपनी तई वो कर रहा है। लाइक अगर कुछ इवेंट हो रहा है, आप फेसबुक लाइव हो जाते हैं, आप कोई दारा अपने अकाउंट के ऊपर, सोशल मीडिया अकाउंट के ऊपर अपनी पोस्ट कर देता है, तो वो इवेंट की रिपोर्टिंग तो हो रही है, लेकिन असल जो जर्नलिज्म है वो इन्वेस्टिगेशन है, डाइविंग डीप इनटू अ सिचुएशन, वहां से फैक्ट्स चेक करके, रिसोर्सेज के साथ बात करके, प्रॉपर एट्रीब्यूशन के साथ, आप फैक्ट चेकिंग के साथ साथ आप फैक्ट्स को पहले उनको एक्सप्लोर करें, फिर बात की गहराई तक पहुंचे, फिर उससे इन्वेस्टिगेट करें जो आपको जहां जहां से कोई गैप नजर आते हैं कि इस इंफॉर्मेशन के ये गैप्स हैं, उन गैप्स को फिल करने के लिए डिफरेंट लोगों के पास, स्टेक होल्डर्स के पास जाएं, जो रेलेवेंट स्टेक होल्डर्स हैं उनके वर्जन लें, फिर आप एक कंप्लीट पिक्चर के साथ आए। तो जब आप वो इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो वो होगी जर्नलिज्म। तो बेसिकली इसका जो स्कोप है ना जर्नलिज्म का, ये सिर्फ अखबार और टीवी के हद तक नहीं है। आजकल जो सबसे बड़ी खबर है वो खबर नहीं है जो सब चला रहे हैं, जो सबसे बड़ी खबर वही खबर है जो सिर्फ आपने एक्सप्लोर की है, वो आपकी एक्सक्लूसिव खबर है, वो आपका स्कूप है, इसे बाकी लोग, बाकी दुनिया नहीं जानती। और इसको अनकवर करना, रिसर्च करना, एक्सप्लोर करना, ये वो तमाम स्किल्स हैं जो एक जर्नलिस्ट को रिक्वायर्ड है। अगर वो उस चीज को अनकवर करता है जिससे एक बहुत बड़ा एक मुआशरे का छुपा हुआ पहलू सामने आता है और उससे मुआशरे में बेहतरी आ सकती है, तो ये जर्नलिज्म। मिसाल है, आपने सुना का पनामा लीक्स एक स्कैंडल था,
1: बिल्कुल बिल्कुल,
2: ठीक है, ऑफशोर कंपनीज निकली थी, तो किन्होंने किया था ये काम, ये बहुत सारे ग्लोबल जर्नलिस्ट ने मिलके, एक कंसोर्शियम ने मिल के एक बहुत बड़ा मेगा डेटा को एक्सप्लोर किया। उस डेटा से फिर उन्होंने जो फाइंडिंग्स निकाली वो ये थी कि बहुत सारे दुनिया के जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, स्टेट्समैन हैं, कोई प्राइम मिनिस्टर है, कोई बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उनकी ऑफशोर कंपनीज हैं पनामा में, ताकि वो अपने टैक्स बचा सके। इस तरह बहुत सारे हमारे और भी बड़े बड़े स्कैंडल जो एक्सपोज किए हैं जर्नलिज्म बहुत साफियों ने, तो वो बड़े बड़े नाम हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे पास मौजूद हैं। तो खबर एक ही होती है, जब वो खबर निकलती है बड़ी दुनिया उसको पीटती है। तो उस वो वाला जर्नलिज्म का जो स्कोप है वो आज भी बरकरार है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ क्या हो रहा है कि हम इवेंट्स की रिपोर्टिंग के पीछे पड़ गए हैं। हम जस्ट उसने कहा उसने ये कह दिया, ये वहां पे लाइव चल रहा है वो दिखा दिया। दिस इज जर्नलिज्म, इट इज नॉट प्योर जर्नलिज्म। प्योर जर्नलिज्म इज ऑल अबाउट एक्सप्लोरिंग द अनएक्सप्लोर्ड। तो जिसको वो स्किल आती है उसको वही असल जर्नलिस्ट है, और वही उसके लिए भी मुसीबतें भी आएंगी डेफिनेटली। जब आप किसी करप्शन को एक्सपोज करेंगे, जब आप पावरफुल इलीट का गिरेबान पकड़ेंगे, तो भी डेफिनेटली प्रेशर आएगा, आपको प्रेशर भी उसको भी बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो वही असल साफी है जो प्रेशर में रह के काम करता है और जो सच बोलता है, ना कि कंप्रोमाइज होके अपनी पार्टी पोजिशन क्लियर कर ले और पार्टी का एक नुमाइंदा बन के रह जाए, वो जर्नलिज्म नहीं है। Everything what is being reported is not journalism. ये public relationing है। We are not supposed to be a PROs. Journalist PRO नहीं है। किसी सियासतदान की प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर कर लेनी, उसका उसकी स्टेटमेंट चला देनी, ये जस्ट एक पब्लिक रिलेशनिंग है। आप उसकी उसको प्रमोट कर रहे हैं, जो कि जर्नलिज्म नहीं है। जर्नलिज्म है कि आपने गिरेबान पकड़ना है उन लोगों का जो कि करप्शन कर रहे हैं, जो इस मुल्क के साथ, इस मुआशरे के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं, जो जुल्म कर रहे हैं, उनको एक्सपोज करना और मजलूम की आवाज उठाना और सच का साथ देना, ये जर्नलिज्म है।
1: ये ड्यूटीज है जर्नलिज्म की। और बहुत खूब सर आपने समझाया कि जर्नलिज्म क्या होती है, ना सिर्फ एक खबर को लेके उससे प्रेजेंट कर देना खबर, वो नहीं होती, बल्कि फैक्ट चेकिंग, रिसर्च और उसमें गहराई में जाके काउंटर, अपने आप के साथ काउंटर आर्ग्यूमेंट करके फिर एक रिजल्ट निकाल के उसे रिप्रेजेंट करना, वो खबर होती है। सर थोड़ा सा मीडिया के हम अंदर चैनल्स में जरा थोड़ा सा जाते हैं, तो टिकर्स वगैरह, क्योंकि आजकल नौजवान नस्ल को अवेयर करना बहुत ज़रूरी होता है कि टिकर्स क्या हैं, क्योंकि जो हमारे सामईन हैं उनको आइडिया होना चाहिए कि टिकर्स क्या हैं, किस तरह काम करते हैं। चलते हैं छोटे से म्यूजिकल ब्रेक की तरफ, सुनते रहिए FM 92.6 UCP की दुनिया।

0: Broadcasting from University Studios,
1: where knowledge is empowerment.
0: This is
2: 92.6.
3: वेलकम बैक सामईन, आप सुन रहे हैं एफएम 92.6 यूसीपी की दुनिया। और आज हम बात कर रहे हैं कि मीडिया लिटरेसी क्या है, मीडिया किस तरह काम करता है और किस तरह मीडिया में हमें अपना रोल जो है वो प्ले करना चाहिए। और इसी पे बात कर रहे थे हेड ऑफ डिपार्टमेंट फैकल्टी ऑफ मीडिया एंड मैस कम्युनिकेशन डॉक्टर आतिफ अशरफ साहब। सर बहुत शुक्रिया। सर बताइएगा कि एक मीडिया स्टूडेंट को किस सेमेस्टर में किस टाइम मीडिया की प्रैक्टिस स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्या 7वें सेमेस्टर के बाद, 8वें के बाद या फिर पहले?
4: देखिए हमजा, बात यह है कि जिसको पैशन, जिसका पैशन जर्नलिज्म है और जो करना चाहता है ना, वो इस डिग्री स्टार्ट करने से पहले भी स्टार्ट कर सकता है। ये जरूरी नहीं है कि इसकी प्रैक्टिस के लिए आपको किसी इदारे से मुंसलिक होना ही लाजमी है। इसकी प्रैक्टिस आप आजकल के दौर में आराम से घर बैठ के स्टार्ट कर सकते हैं।
3: सही।
4: सबसे पहली बात जो मैं हमेशा बात करता हूँ स्टूडेंट से कि जर्नलिज्म बेसिकली क्या है, सबसे पहली चीज ये है कि आपके पास एक नोज फॉर न्यूज होनी चाहिए। आपके पास वो स्मेल आपको करनी आनी चाहिए कि खबर असल में है क्या
3: है क्या।
4: जब आपने खबर को स्मेल कर लिया कि ये आइडिया, ये खबर हो सकती है, तो उसके बाद सेकंड स्किल है कि आप उसके ऊपर रिसर्च करें, उसको एक्सप्लोर करें कि यार आइडिया जो मुझे आया कि वाकया कि इस आइडिया के ऊपर पहले कितना काम हुआ है और ये आइडिया है क्या, उसके बैक स्टोरी समझें। बैक स्टोरी होती है कि उसका कॉन्टेक्स्ट देखें, उसका बैकग्राउंड देखें, जो जो उस आइडिया के साथ मुंसलिक स्टेक होल्डर्स हैं उनको स्टडी करें। ठीक है, जब आप स्टडी कर लेंगे देन आपका आइडिया रिफाइन होगा। उसके बाद अगला स्टेप क्या है कि अगला स्टेप है आपने न्यूज हंट स्टार्ट करना है। आप मुतलका रेलिवेंट स्टेक होल्डर्स के पास जाएं, रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स तलाश करें, उनके इंटरव्यूज करें, डिग आउट करें, फैक्ट्स को डिग आउट
3: निकालना शुरू,
4: एट्रीब्यूट करें जो मैं फैक्ट देख रहा हूँ कि वैलिड है, मुस्तनद है कि नहीं है।
3: नहीं।
4: ये करने के बाद जब आपके पास एक प्रॉपर डेटाबेस आ जाएगा देन उसका अगला स्टेप है रिपोर्ट राइटिंग का। रिपोर्ट राइटिंग के लिए आपके पास राइटिंग स्किल्स होनी चाहिए, उसके लिए आपकी लैंग्वेज स्ट्रांग होनी चाहिए।
3: उर्दू क्या?
4: ठीक है, उर्दू कर लें, इंग्लिश कर लें, लेकिन मेनली मीडिया उर्दू में, लिहाजा उर्दू में ही मैं समझता हूँ ज्यादा बेहतर है कि आप उर्दू के अंदर लिखना सीखें, जर्नलिस्टिक राइटिंग सीखें। उसके लिए जो बेस्ट तरीका है वो आप अखबार पढ़ें। जब आप रीड करेंगे आपको लिखना भी आ जाएगा। इस तरह जब आपने एंकर बनना है, टीवी के लिए बोलना है, तो आप एंकर्स को सुने, रिपोर्टर को सुने, आपको बोलना आ जाएगा। तो लिखा हुआ स्क्रिप्ट जो अखबार के अंदर खबरें पड़ी लिखी हुई हैं, उन खबरों को पढ़ें, देखें स्ट्रक्चर क्या है, लीड क्या होती है, उसकी सुपर लीड क्या होती है, इंट्रो कैसे लिखा जाता है, 5W1H क्या होते हैं, एट्रीब्यूशन क्या होती है, खबर बैलेंस कैसे किया जाता है, खबर का जो नेट ग्राफ कैसे लिखा जाता है। ठीक है, तो बेसिकली वो जो तमाम खबर का स्ट्रक्चर है वो आप आराम से अपनी कैपेसिटी बिल्ड कर सकते हैं। आजकल तो ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स भरे पड़े हैं, यूट्यूब के ऊपर भी, एडेक्स के ऊपर भी डिफरेंट कोर्सेज आप कर सकते हैं। तो जो ट्रेडिशनल जो जर्नलिज्म है वो यही है कि आपने जब आपके पास एक खबर स्मेल करते हैं देन रिसर्च स्किल्स आपकी अपनी है, आपको हेल्प आउट करेंगे बहुत सारे टूल्स, AI के टूल्स हैं जो आपको रिसर्च करने में हेल्प आउट करेंगे, डिजिटल मीडिया के बहुत सारे टूल्स हैं जो आपको खबर के सोर्स तक लेके जाएंगे, डाटा जर्नलिज्म के टूल्स मौजूद हैं, ओपन सोर्स डाटा अवेलेबल है पाकिस्तान के अंदर, बहुत सारी चीजें आप देख सकते हैं, क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो जब आप वो कर लेंगे तो रिपोर्ट राइटिंग के साथ साथ जब आपको लैंग्वेज की स्किल्स, ये ओवरनाइट नहीं आएंगे आपको ना, ये लिख के आप लिखने के बाद टाइपिंग भी सीखें उर्दू टाइपिंग, बिकॉज आजकल जर्नलिज्म सारी कंप्यूटर्स के ऊपर हो रही है। अगर आपको उर्दू टाइपिंग नहीं आती तो आप मिसफिट हैं। अगर आप रिपोर्टर हैं, एडिटर हैं, एंकर हैं, उर्दू टाइपिंग इज अ मस्ट, बिकॉज जब आप टाइपिंग करेंगे, टाइपिंग करके ही आपका प्रॉम्प्टर बनेगा, टाइपिंग से ही पैकेज का स्क्रिप्ट बनेगा, टाइपिंग से ही आपका इंट्रो बनेगा, तो टाइपिंग के बगैर हैंड रिटन कोई चीज नहीं,
3: टाइपिंग बेस है आपकी।
4: तो टाइपिंग थोड़ा सा सीखें, फिर उसके अलावा आप डिफरेंट टूल्स देखें, मसलन डिजाइनिंग के टूल्स हैं, एडिटिंग के टूल्स हैं, उनको देखें, कैमरा कैसे काम करता है, कैमरे के फ्रेम क्या होते हैं, कंपोजिशन क्या होती है, स्टोरी को रिकॉर्ड कैसे करना है, इंटरव्यू रिकॉर्ड कैसे करना है। ये मल्टीपल स्किल्स है जो कि आपको आराम से घर बैठ के सीख लेनी। जब आपके पास स्किल्स आ जाएंगी उसके बाद इफ यू हैव स्किल्स तो छोड़ दें, अगर आपको कोई मीडिया उस चांस नहीं भी देता, जस्ट स्टार्ट योर यूट्यूब चैनल, स्टार्ट योर फेसबुक पेज, स्टार्ट योर इंस्टाग्राम पेज, वहां पे कंटेंट डालते रहे आपकी डिग्री मुकम्मल होने से पहले। इवन के मैं कहता हूँ आई कैन चैलेंज, अगर आप कंसिस्टेंट रहे, आई कैन चैलेंज विद इन 1 ईयर यू विल बी अर्निंग एज मच एज यू कुड हैव इमेजिन्ड। ठीक है, और आहिस्ता आहिस्ता जब आपकी एक फेस आपका रजिस्टर हो जाएगा ऑन सोशल मीडिया, आपके पेज, आपका यूट्यूब चैनल अगर वो रजिस्टर हो गया, उसकी शिनाख्त बन गई, देन आफ्टर वंस यू डिग्री कम्प्लीटेड आफ्टर 4 ईयर्स, तो 4 साल से पहले आपको बहुत सारे क्लाइंट्स अप्रोच कर सकते हैं,
3: बिल्कुल
4: बहुत सारे चैनल्स अप्रोच कर सकते हैं बेस्ड ऑन योर स्किल्स। और स्किल आपकी आपने खुद डिसाइड करनी है,
3: बिल्कुल
4: आपकी रिपोर्टिंग स्किल्स हैं, आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स हैं, आपकी ब्लॉगिंग की स्किल्स हैं, आपकी AI की स्किल्स हैं, आपकी कंटेंट क्रिएशन की स्किल्स हैं, इट्स ऑल अप टू यू। हमारे दौर में क्या था, हमें मौका चाहिए था, कोई मौका दे, चांस दे,
3: मौका दे।
4: आजकल मौके सामने बैठे हुए हैं,
3: मौके तो आप
4: वो स्किल चाहिए आपको, वो स्किल आपको चाहिए, स्किल है उसको एग्जीबिट करें, स्टार्ट करें, अल्लाह मालिक आपको जो है ना वो बहुत सारा। और बात यह कि काम खुद सिखाएगा मुझे कैसे करना है। सबसे बड़ा बॉस काम खुद होता है जो आप कर रहे होते हैं, और आप फिर नेटवर्किंग डेवलप करें, लाइक माइंडेड लोगों के पास बैठे सीखें, टीचर से सीखे, प्रोफेशनल से सीखे, पूछे मैं कैसे आगे बढ़ूं, तो इस तरह आपको उनके साथ अटैच होंगे, नेटवर्किंग से बहुत आपका फायदा होगा, आपको मौके मिलेंगे, बहुत सारे लोग आपको काम दे सकते हैं। तो ये वो स्किल है, अगर आपके पास नियत है, स्किल है, अगर आप करना चाहते हैं तो जस्ट यू नीड अ मोबाइल फोन, यू नीड अ लैपटॉप एंड दैट्स इट। आपकी मुकम्मल प्रोडक्शन हाउस आपका मोबाइल फोन है, स्टार्ट इट एंड डू व्हाटएवर यू वांट इन जर्नलिज्म।
3: बहुत खूब, बहुत खूब। और अगर आपका टारगेट सेट है, आपने पैशनेट है, तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं, आप सितारों पे कमंद भी डाल सकते हैं, आप इकबाल के शाहीन भी बन सकते हैं, तो टारगेट आपका होना बहुत जरूरी है। चलते हैं छोटे से म्यूजिकल ब्रेक की तरफ, सुनते रहिए FM 92.6 UCP की दुनिया।

0: 92.6 बोरियत को भगा दो।
1: वेलकम बैक सामईन, आप सुन रहे हैं FM 92.6 UCP की दुनिया। और आज के प्रोग्राम में हमें हेड ऑफ डिपार्टमेंट मीडिया एंड मैस कम्युनिकेशन डॉक्टर आतिफ अशरफ साहब ने ज्वाइन किया है, और उनसे हम बात कर रहे थे कि मीडिया चैनल के अंदर जो है वो किस तरह के मामलात होते हैं, टिकर्स किस तरह चलते हैं, क्या होते हैं, प्रोग्रामिंग का सिस्टम क्या होता है। तो सर बताइएगा कि टिकर्स जो हैं वो क्या होते हैं, किस तरह चलाए जाते हैं और क्या सिस्टम होता है उसका।
2: नहीं, जिस तरह होता ना कि कोई क्राइम होता है थाने में, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट FIR होती है।
1: yes.
2: तो समझ लगे खबर का पहला स्टेज टिकर है। टिकर क्या होता है कि टिकर के लिए, चूंकि टीवी इज अ ऑडियो विजुअल मीडियम, वहां पे आपने एक खबर को प्रोड्यूस करने के लिए आपको प्रॉम्प्टर चाहिए, उसकी स्क्रिप्टिंग चाहिए, उस कैमरा चाहिए, फिर उसकी ट्रांसमिशन चाहिए, एक एंकर चाहिए, एक पूरा एक आपको एक PCR चाहिए, तब जाके प्रॉम्प्टर के साथ फिर विजुअल्स भी चाहिए, एंकर की आवाज जाएगी, फिर उसके बाद ये पूरा प्रोसेस में टाइम लगता है। लेकिन टिकर क्या है, टिकर जस्ट एक टेक्स्ट है जो कि टीवी के बॉटम के ऊपर, जैसे खबर आती है आप उसको टाइप करते हैं और वो टेक्स्ट स्क्रीन के ऊपर आ जाता है। जस्ट एक इनके फौरन ना इसमें किसी एंकर की जरूरत है, ना ऑडियो की, ना वीडियो की, जस्ट एक टेक्स्ट के फॉर्म में आप खबर ब्रेक कर देते हैं। अक्सर आपको जब खबर ब्रेक होती है ना, सबसे पहले जो टिकर की फॉर्म में इसको टेक्स्ट आ
1: रहा होता है,
2: उसके बाद वो टिकर अपडेट होते रहते हैं, उसके बाद फिर 5 मिनट बाद, 6 मिनट बाद या 3 मिनट बाद फिर वो टिकर एंकर के पास जाते हैं, एंकर रेडी होती है, टिकर को पढ़ती है या पढ़ता है, फिर एक पूरा सिस्टम के साथ फिर वो ब्रेक होती है, फिर वो ब्रेकिंग न्यूज चलती है, फिर वो साथ रिपोर्टर का बीपर चल रहा होता है, फिर वो उसके ऊपर मजीद डिटेल दे रहा होता है। तो टिकर बेसिकली वो टेक्स्ट की फॉर्म में एक ऐसा फॉर्मेट है जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन के तौर के ऊपर टीवी की स्क्रीन के ऊपर आप डिस्प्ले करते हैं।
1: मीडिया की जो FIR है वो टिकर है आपके मुताबिक। और सर टेलीप्रॉम्प्टर की आपने बात की, टेलीप्रॉम्प्टर तो बहुत जरूरी होता है, वो कैब और आपकी बहुत ज्यादा चीजें जो है वो उसमें क्लियर कर देता है, समझ आ रही होती है, तो टेलीप्रॉम्प्टर क्या है ये भी बताना जरूरी है।
2: देखिये, अक्सर हम छोटे थे ना, जब हम टीवी देखते थे हमें बड़ा ताज्जुब होता था कि ये एंकर सारी खबरें जुबानी कैसे याद कर लेती है।
1: ऐसे ही,
2: लेकिन बाद में अंदाजा हुआ यार ये कोई भी एंकर खबर जुबानी नहीं पढ़ता, बल्कि सामने लिखा हुआ स्क्रिप्ट होता है और जो स्क्रीन के ऊपर चल रहा होता है। कोई भी खबर जो एंकर आपको पढ़ता हुआ नजर आ रहा है या आ रही है, वो बेसिकली न्यूज रूम ने उस खबर को प्रॉपरली जर्नलिस्टिक राइटिंग में, स्क्रिप्ट को प्रॉपर जर्नलिस्टिक राइटिंग में लिखा हुआ है। जब वो स्क्रिप्ट लिखा जाता है फिर उसको एडिट किया जाता है, कुछ डेस्क के ऊपर लोग कॉपी, जिनको कॉपी एडिटर्स बोलते हैं, रिपोर्टर खबर डालता है, फाइल करता है, देन कॉपी एडिटर्स उस खबर को एडिट करते हैं। एडिट से मतलब यह

0: ट्रेनिंग होती है, उसकी प्रैक्टिस कराई जाती है ताकि वो जब पढ़े तो लगे इस तरह के वो खुद नेचुरल वे में ऑर्गेनिकली पढ़ रहा है, ना कि ये रीड कर रहा है प्रॉम्प्टर से।
1: बिल्कुल रीड नहीं कर रहा और डिलीवर जो कर रहा है वो अपने यानी कि उसने सोचा हुआ है और वो आपको सिखा रहा है। और न्यूज़ लेते किस तरह है, क्योंकि हमने चलाने की भी बात कर ली, हमने FIR भी दे दी न्यूज़ की, न्यूज़ गैदर कैसे की जाती है? एक रिपोर्टर को अगर खबर चाहिए, फॉर एग्जाम्पल यूनिवर्सिटी में ही हमें अगर किसी प्रेजेंटेशन के लिए, किसी असाइनमेंट के लिए खबर चाहिए, तो एज अ रिपोर्टर हमें किस तरह न्यूज़ को गैदर करना होगा?
0: जिसमें दो कैटेगरीज हैं, एक कैटेगरी है इवेंट्स रिपोर्टिंग की, जिसमें मैंने पहले जिक्र किया, बाज़ुकात बल्कि हर दफ़ा होता ही है कि चैनल के अंदर रात को 12 बजे तक या 1 बजे तक मुख्तलिफ शहरों से डिफरेंट डे प्लान्स आ रहे होते हैं। मतलब लेट्स सपोज मुल्तान के अंदर, कराची के अंदर, लाहौर के अंदर, पेशावर के अंदर जो अगले दिन एक्टिविटीज़ होनी हैं वो मीडिया को पहले इन्फॉर्म कर दी जाती हैं, जो शेड्यूल्ड एक्टिविटीज़ हैं। जिस तरह किसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, किसी ने कोई कोई इवेंट होना है किसी होटल में, कोई मैच है, वो ऑलरेडी पहले इन्फॉर्म कर दिया जाता है ताकि मीडिया वहाँ पहुँच के कवर कर ले। तो ये डे प्लान के अंदर जो इवेंट शेड्यूल्ड हैं उनकी एक पूरी लिस्ट आ जाती है वो अप्रूवल के लिए। उसके अलावा जो रिपोर्टर खुद करना चाह रहा है, दूसरी ऑप्शन में लेट्स सपोज रिपोर्टर ने जू के अंदर एक्टिविटी कवर करनी है, या उसने कौमी असम्बली का इजलास कवर करना है, या उसने सूबाई असम्बली का इजलास कवर करना है, या उसने किसी एक इंतहाई लो लाइंग इलाके में टूटी हुई गलियों की कवरेज करनी है जहाँ पे लोग मसाइल का शिकार है, तो वो अपना आइडिया डालेगा, आइडिया पिच करेगा, वो भी डे प्लान का हिस्सा होता है। इसी तरीके से कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं जो कि आपको असाइन किए जाते हैं न्यूज़ रूम की तरफ से। लेट्स सपोज रिपोर्टर खुद से कुछ नहीं लेके आ रहा, फिर न्यूज़ रूम खुद असाइन करेगा, यार आजकल लेट्स सपोज मैं कहता हूँ यार बजट का सीजन आ रहा है तो बजट के लिए हमें लोगों की वॉक्स पॉप्स चाहिए कि लोग महंगाई से कितना तंग हैं, तो यहाँ से फिर आप असाइन करेंगे या फलाने मुल्तान से, लाहौर से, कराची से महंगाई के ऊपर लोगों से वॉक्स पॉप्स करो, मीन उनसे कमेंट्स लेके आओ कि वो क्या समझते हैं, ठीक है। तो ये वो तीन चार जो शेड्यूल्ड इवेंट ऑलरेडी आते हैं जो रिपोर्टर एक्टिवली करता है, तीसरा जो न्यूज रूम उन्हें साइन करता है, तो इस तरह वो खबरें सारी एक एक लिस्ट आ जाती है, फिर उस खबरों की अप्रूवल जो कमेंट अथॉरिटी है वो देती है, देन अगले दिन वो रिपोर्टर अपना अपनी असाइनमेंट के ऊपर काम करना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ कोई इसके अलावा भी एक खबरों का सोर्स है, अचानक कोई हादसा हो गया कि बम ब्लास्ट हो गया, फिर फौरन जो टीमें हैं वो बुलाई जाती है वहां पे पहुंच जाती है, या कोई रिपोर्टर फर्दर एक स्टोरी पे काम कर रहा है पिछले 4 दिन से उस पे काम करता रहेगा, फिर वो उसकी एक्सक्लूसिव स्टोरी होगी। तो डिफरेंट मल्टीपल मींस हैं, कुछ सोर्सेज आए हैं, कुछ आपके पास मॉनिटरिंग के ऊपर बहुत सारी न्यूज एजेंसीज की फीड आ रही होती है, बाकी अदर न्यूज चैनल से चीजें आ रही होती हैं, न्यूज एजेंसीज हैं, टीवी चैनल्स हैं, प्रेस रिलीज हैं, हैंड आउट्स आपको बताते रहते हैं, तो बहुत सारे सोर्सेज हैं, लेकिन गेट कीपिंग आपने करनी है, फिल्ट्रेशन आपने करनी है, कौन सी खबर आप समझते हैं कि एडिटोरियली ये खबर सबसे बेस्ट है, ये चलनी चाहिए, देन पिक एंड चूज आप खुद कर लेते हैं।
1: बिल्कुल, बहुत खूब और बहुत बेहतरीन अंदाज से सर आपने समझा दिया कि खबर को किस तरह लेना है। अगर बतौर स्टूडेंट भी आपको चाहिए तो आप खुद बना सकते हैं खबर, आप ढूंढ सकते हैं, आप रिसर्च कर सकते हैं, आप अपनी स्टोरी खुद जनरेट कर सकते हैं। तो सर सहाफ़ियों का दूसरा घर कहा जाता है प्रेस क्लब को, तो प्रेस क्लब की क्या अहमियत होती है मीडिया के अंदर?
0: देखिए प्रेस क्लब एक कम्युनिटी है जो कि जितने भी साफ़ी हैं वो वहाँ एक 9 to 5 जॉब से, या जो रिपोर्टर्स हैं जो फील्ड से थोड़ा सा टेंस माहौल में जब काम करते हैं तो बहुत ही प्रेशर वाला काम होता है, तो वहाँ पे उनको एंटरटेन किया जाता है, वहाँ बैठ के एक तो वहाँ पे नेटवर्किंग डेवलप होती है, एक दूसरे के हालातों वाकयात का पता चलता है, वहाँ पे खबरें भी शेयर हो रही होती हैं, वहाँ पे वो कुछ रिक्रिएशनल एक्टिविटीज कर रहे होते हैं, वहाँ पे लेट्स स्पोर्ट्स हैं, बैडमिंटन खेलते हैं, कैरम खेलते हैं, बिलियर्ड खेलते हैं, वहाँ पे जिम है वो जिम करते हैं, वहाँ पे खाना चाना खाते हैं सब्सिडाइज रेट के ऊपर और एक रिलैक्स होते हैं, वहाँ पे एक नेटवर्किंग भी है, शेयरिंग भी है, फैसिलिटेशन भी है, और वहाँ पे क्लब एक जो कि क्लब को सब्सिडाइज करता है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, तो यहाँ पे साफियों को फिर एक बहुत एक बजट के साथ उनको फैसिलिटेट किया जाता है ताकि वो साफी जो है लाहौर के जो साफी हैं वहाँ पे मिल बैठ कर एक थोड़ा सा एक अच्छा एक क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सके,
1: अच्छा कर सके, और खबरें जो है बड़े आसानी तरीके से इंजॉय करते करते जो है वो शेयर कर सकें। और ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी फील्ड के अंदर जो है आपको रिलैक्स होना, फिर क्योंकि एक ये तो फील्ड भी कुछ इस तरह की है कि आपको हर टाइम एक्टिव रहना पड़ता है मीडिया के अंदर। और सर आखिर पे हमें एक पैगाम दीजिएगा लाजमी आजकल के नौजवान नस्ल को कि जो मीडिया है उसको किस तरह इस्तेमाल करना है, क्योंकि हम लोगों के पास जो है वो अप्रोच तो आ गई मीडिया की, अब इस्तेमाल किस तरह करना है उसका?
0: देखें मीडिया के अंदर जो है ना इस्तेमाल किस तरह, मीडिया का यूज बहुत इंपॉर्टेंट आपने क्वेश्चन किया है। देखें एक तो हम मीडिया कंज्यूम कर रहे हैं, रैंडमली हमारे पास मोबाइल फोन है, हम फीड स्क्रॉल कर रहे हैं, हम टिकटॉक पे है फीड स्क्रॉल किए जा रहे हैं, हम इंस्टाग्राम पे है फीड अपनी जो फीड है स्क्रॉल किए जा रहे हैं, इस तरह फेसबुक ट्विटर के ऊपर हम अनइंटेंशनली हम जो कंटेंट हमारे सामने आ रहा है जो एल्गोरिदम डिसाइड कर रहा है हमने क्या देखना है, हमारी उस एंगेजमेंट हैबिट्स को देखते हुए हमारे इंटरेस्ट

0: तो देखते हैं, वो चीज हमारे पास आ रही होती हैं। तो मैं ये समझता हूँ ये टाइम जाया करने वाली बात है। ये डिसाइड आप लोगों ने करना है कि आपने क्या देखना है। इट्स यू टू डिसाइड कि कौन सा कंटेंट कंज्यूम करना है। एवरी कंटेंट इज नॉट वर्थ ऑफ कंजप्शन। इसके लिए सेकंड स्टेप के ऊपर देखिए, मैं हमेशा ये बात कहता होता हूँ कि मीडिया का जो यूज है, इसमें मैं बात करूँ मेन स्ट्रीम मीडिया की, वो मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर जो लोग बैठे हैं वो प्रोफेशनल्स हैं।
1: एग्जैक्टली,
0: वहां से आप जो न्यूज देख रहे हैं उनमें फेक न्यूज के चांसेस तकरीबन ना होने के बराबर है, क्योंकि वो ऑथेंटिक खबर होती है विद वैलिड रिसोर्सेज के साथ, प्रॉपर एट्रीब्यूशन के साथ, वो फिल्टर होके डेस्क से, रिपोर्टर से, फिर वो बहुत सारे मल्टीपल गेट कीपर्स हैं, तब वो खबर स्क्रीन तक पहुंचती है। नो डाउट कि इसमें बहुत सारा सेंसरशिप भी आ जाता है, कंट्रोल भी आ जाता है, लेकिन वो कुछ केसेस में जो कि यू समझ लेंगे हार्ड न्यूज के केसेस हैं,
1: पॉलिटिकल न्यूज के केसेस
0: हैं, लेकिन जो आप जो कंटेंट आप कंज्यूम कर रहे हैं मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर, लाइक मैं ये नहीं कह रहा कि मैं पॉलिटिकल कंटेंट की थोड़ी सी इसमें एग्जेम्पशन देता हूं। बहुत सारे केसेस के अंदर सियासी जो कंटेंट है उसको हम न्यूट्रल नहीं कह सकते, क्योंकि वहां मल्टीपल फैक्टर्स हैं। मैं यहां पे उसको डिस्कस नहीं करने जा रहा, बिकॉज दिस इज एन एकेडमिक रेडियो, नॉट अ मेनस्ट्रीम न्यूज चैनल। तो लेकिन यह कि जो अदर जो हमारे सेगमेंट ऑफ सोसाइटीज हैं, सोशल इश्यूज हैं, बाकी कल्चरल इश्यूज हैं, बाकी और जो लोगों के इश्यूज हैं, लेट्स सपोज किसी की गली नहीं बन रही, गली में पानी खड़ा, गटर बंद है, तो मीडिया जो कवर कर रहा है उसकी गली को, लोगों के तासुरात दे रहा है, वो रियलिटी को
1: पब्लिक
0: ओपिनियन को दे रहा है। तो वहां पे यहाँ पे बहुत सारे फिल्टर से खबर निकल के आती है, वहाँ पे एथिक्स का ख्याल रखा जाता है, जर्नलिज्म के एथिक्स का, लेट्स ब्लड नहीं दिखाना किसी का, किसी की कंसेंट के बगैर किसी का चेहरा नहीं दिखाना, किसी को आपने बगैर कंसेंट के वो ऐसी बात नहीं करनी जो उसने मना किया हो कि ऑन रिकॉर्ड लाने के ऊपर। तो यहाँ पे फिल्टर्स के साथ, एथिक्स के साथ कंटेंट को फिल्टर करके दिखाया जाता है ताकि ऑथेंटिसिटी बरकरार रहे। आज भी ऑथेंटिक कंटेंट जितना भी है वो सिर्फ मेनस्ट्रीम मीडिया के ऊपर ही है। अखबारात जो है वो खबर जो पब्लिश होती है, अगर आपको लगता है फेक है, आप चैलेंज कर सकते हैं उसको। कैमरा बैठा हुआ है, टीवी के लिए कैमरा बैठा हुआ है, अखबार के लिए रूल्स रेगुलेशन बने हुए हैं, ठीक है। तो जो भी चीज चलेगी, अगर लेट्स सपोज फेक न्यूज चलती है, एथिक्स को बलाए ताक रख के किसी न्यूज मीडिया ने कोई चीज चलाई है, तो कैमरा बैठा हुआ है, रेगुलेशन बॉडीज बैठी हुई है, वो उनको काउंटर करेंगी, ऑडिट भी करेंगी, उनको करेक्टिव मेजर्स भी करेंगी, और ऑथेंटिक कंटेंट आपको मिलेगा। लेकिन व्हाट अबाउट सोशल मीडिया, यहाँ पे अनफिल्टर्ड कंटेंट आ रहा है, आप कुछ भी देख सकते हैं, कंटेंट सही है, गलत है, सोर्स ठीक है, गलत है, फेक है, एजेनेटेड है, प्रोपेगेंडा है, फैब्रिकेटेड है, यू डोंट नो। उसके लिए इफ यू डोंट हैव प्रॉपर मीडिया लिटरेसी स्किल्स, देन आप उस कंटेंट को जो कंज्यूम करें उसको आप सच मानना स्टार्ट कर देंगे, और जब आप एक चीज को सच मानना स्टार्ट करेंगे, फिर वैसी झूठी चीजें आप तक आना शुरू हो जाएंगी, फिर आप एको चैम्बर का शिकार हो जाएंगे, आप कहेंगे जो मैं सोचता हूँ वही चीज सही है और वही चीज मेरे सामने आने चाहिए। इनकी जो काउंटरिंग जो काउंटर आर्गुमेंट है, जो कि अदर साइड ऑफ द कॉइन है, आप उसको सुनना ही नहीं चाहेंगे, इसलिए फिर आप एक एक्सट्रीमिस्ट अप्रोच का शिकार हो जाएंगे। तो न्यूज चैनल्स के अंदर क्या होता है कि वहां पे आपको फिल्टर्ड कंटेंट मिलता है, जो प्रोफेशनल्स उस कंटेंट को तैयार करते हैं, और प्रोफेशनल्स के थ्रू ही आप तक कंटेंट पहुंचता है। तो जो भी मेनस्ट्रीम मीडिया का कंटेंट है रिगार्डिंग नेशनल इश्यूज, इंटरनेशनल इश्यूज, आज भी वही ऑथेंटिक है और वही चीज ही आपको देखनी चाहिए। आप देखिए जितना भी आप मीडिया देखते हैं, अल जजीरा है, सीएनएन, बीबीसी है, या इवन का डॉन है, पाकिस्तान का जियो है, एक्सप्रेस है, दुनिया है, इन तमाम मीडिया के ऊपर चेक एंड बैलेंसेस हैं। अगर वो चीज गलत चलाएंगे देन दे हैव टू आंसर। सो मीडिया की यूज करने के हवाले से आपने विजिलेंट रहना है, और ऑथेंटिक खबरें आज भी मेनस्ट्रीम मीडिया तक ही महदूद हैं, उन्हीं को लिफ्ट करता है सोशल मीडिया। अगर कोई आपको, हाँ हो सकता है कि बहुत सारी खबरें जो मेनस्ट्रीम मीडिया ना दे रहा हो लेकिन सोशल मीडिया पे आ रही हो वो सही भी हो, ऐसा हो भी होता भी है,
1: ऐसा होता है,
0: सेंसर होता है, वहां से देखते हैं
1: हम कई दफा हमारे सामने,
0: बिल्कुल एग्जैक्टली वो चीज वहां सेंसर होती है, यहां से आप देख लेते हैं, लेकिन फिर भी वो ठीक है, ये नहीं कहता वो सब गलत है, बहुत सी ठीक भी है, लेकिन उस वो ठीक कैसे है, यू नीड टू हैव मीडिया लिटरेसी स्किल्स To critically evaluate the content you are consuming.
1: बहुत खूब सर, आपने तो दरिया को कूजे में जो है वो बंद कर दिया, और बहुत बेहतरीन अंदाज के साथ जो है हमें बता दिया है कि हर चीज़ आपके हाथ में है, मीडिया आपके हाथ में है, तो इस्तेमाल उसका किस तरह करना है, और किसी भी चीज़ को इस्तेमाल करने के लिए उसके बारे में आपको अवेयर होना ज़रूरी है, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो आपके पास मोबाइल हो, चाहे वो सोशल मीडिया हो, तो हर चीज़ को जो है आपको जाँच पड़ताल करके फिर जाके ऑन एयर करना चाहिए। तो ये था हमारा आज का इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम फैकल्टी मीडिया एंड मैस कम्युनिकेशन। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज आपने टाइम दिया, और उम्मीद करता हूँ सामईन आपने भी बहुत कुछ सीखा होगा, बहुत कुछ आपको यहाँ से पता लगा होगा कि मीडिया किस तरह काम करता है और कौन कौन सी इम्पैक्ट्स होते हैं मीडिया के। तो आज का प्रोग्राम अपने अख्ताम को पहुँचता है, सुनते रहिए FM 92.6 UCP की दुनिया।

सुरोड़ताल सुरोड़ताल ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास सिर्फ FM 92.6 UCB की दुनिया।

0: इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन एंड न्यूज।
1: मौसीकी चाहे आंसुओं का सफर हो, चाहे रक्स की दुनिया, दिल बुने मोहब्बत के आशियाने हो या फरागत का जमाना।
2: एक्सप्लोरिंग पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट अमारा माजिद और मेरे साथ है मेरे को होस्ट
3: आरजे फाद कुरैशी।
4: अस्सलाम वालेकुम, यू आर लिसनिंग टू FM 92.6 UCP की दुनिया। आई एम नूरुल हुदा विद द लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट्स इन द इंग्लिश न्यूज बुलेटिन,
0: ओनली ऑन वन प्लेस,

ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCB ki duniya.

0: मुझे डायबिटीज? मैं तो बड़ा फिट हूँ। डायबिटीज तो मोटे लोगों को होती है।
1: हम तो खालिस खुराक खाते हैं, हमें नहीं होगी डायबिटीज।
2: डायबिटीज वो तो मीठा खाने से होती है, इसीलिए मीठा खाती नहीं।
0: डायबिटीज तो सिर्फ बुढ़ापे में होती है।
3: मैं भी यही सोचता था, मगर सच तो ये है कि पाकिस्तान डायबिटीज के हवाले से दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क है। इसीलिए अपनी सेहत पर गौर करें। अगर आपको इनमें से कोई भी अलामत महसूस हो रहे हो तो फौरन अपने डॉक्टर से मशवरा करें। डायबिटीज वसाइल और आमदनी से नहीं बल्कि एक्शन से कंट्रोल हो, यानी मतवाजन गजा, रोजाना एक्सरसाइज और डॉक्टर की तजवीज की हुई दवा। याद रखिए, अगर डायबिटीज से जीतना है तो वक्त पर एक्शन लेना है।

0: anything. मैंने paper तो नहीं लिखवाना.
1: Skill issue basically.
0: Yeah, so I would rather कि someone you know takes a 2-month course, knows Canva, knows Adobe, and just comes back and is able to drive those results. And I know a lot of people that I've worked with. Especially in digital marketing, they don't have degrees. उन्होंने YouTube से सीखा है या उन्होंने करके सीखा है.
1: Mostly freelancers, they are very good at it because it comes with practice.
0: हाँ, उन्होंने अपने अपने business बना लिए हुए हैं. अब वो कोई 20 companies के चला रहे हैं ad, उन्होंने नीचे भी बंदे बैठा के उनको train करके और SEO में भी ऐसे ही हो रहा है. So I definitely think के there is a lot of opportunities out there, especially online. ये चीजें सीखने की और वो ज्यादा वो होती हैं relevant और up to date होती हैं.
1: Right, okay. So, you know, as students, we always hear about business plans, strategies, market research, all the jargon words. But real life is a whole different story. Mm. What's one thing about running a business that no one prepares you about?
0: I think the human handling part of it. I think no one prepares you for the day-to-day jo aapko issues aate hai na. Just the fact that, you know, you have a team of maybe 20 people and now all the 20 people have 20 issues that they're having in their life, right? So, ek bacha aaya humare paas and he was straight out of college. So, ma'am, maine apni behen ko na pehle chhodna hota hai, to main to 10 baje se pehle nahi aa sakta. You know, so there's that issue. Then there's someone who's like, oh, आज बस यू नो माय मदर इन लॉ इज सेइंग दिस तो आई कैन नॉट कम या दिस गर्ल इज सेइंग दिस टू मी और इसने ये लंच ब्रेक में मेरे साथ किया था एंड दैट्स यू आर जस्ट लाइक गोइंग अ बिट मैड कि भाई मैं कितनी लोगों के साथ क्या क्या डील करूं बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे दे आर गोना कम टू यू एंड लुक फॉर रेजोल्यूशन तो इसमें थोड़ा सा होता है कि यू हैव टू डील विद अ लॉट ऑफ डिफरेंट पर्सनालिटीज और उनको चलाना भी साथ और फिर उनको सॉर्ट ऑफ इन चेक भी रखना कि भाई अब यू नो आपके लिए तो नहीं टाइमिंग चेंज हो सकती ऑफिस की बट व्हाट लीवे कैन वी गिव यू या व्हाट सॉल्यूशन कैन आई टेल यू
1: आई हैव अ लिटिल बिट ऑफ कैचिंग अप टू डू हियर बिकॉज यू टोल्ड मी इन द बिगिनिंग दैट यू स्टार्टेड अलोन यू वर लुकिंग एट योर सोशल मीडिया अलोन यू वर डूइंग द मार्केटिंग अलोन सो नाउ यू हैव अ टीम
0: Yeah, now we have a team. We did have a team then too. So on the ground sales, we did have team. But I built my own team. So that's 4 or 5 people who work directly under me in the marketing department. And yeah, so we have a graphic designer. We have a video editor. We have a content creator. And then we have my, you know, number two, who's my deputy manager as well. Mm-hmm. So a couple of people. And then the CSR person who like deals with all the queries that are coming in.
1: Right,
0: so, you know, unko to directly I deal with. And then you have teams because you cannot deal with all 20 people but then sometimes you know us team se issues aa rahe hote hain is team mein and then wo aake bata rahe hote hain aapko there's been a lot of fact finding missions etc
1: okay listeners we will be back after a short musical break and we'll catch up just from here

0: सुनते रहिए FM 92.6 UCP की दुनिया.
1: When you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCP की दुनिया.

0: न्यूज।
1: मौसीकी चाहे आंसुओं का सफर हो, चाहे रक्स की दुनिया, दिल बुने मोहब्बत के आशियाने हो या फरागत का जमाना।
2: एक्सप्लोरिंग पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट अमारा माजिद और मेरे साथ है मेरे को होस्ट
3: आरजे फाद कुरैशी।
0: अस्सलाम वालेकुम, यू आर लिसनिंग टू एफएम 92.6 यूसीपी की दुनिया। आई एम नूरुल हुदा विद द लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट्स इन द इंग्लिश न्यूज बुलेटिन, ओनली ऑन वन प्लेस। देन स्टे ट्यून्ड

0: एक नया अंदाज,
1: एक नई सोच,
0: एक नई पहचान,
1: एक नई लगन।
0: यूसीबी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान।
1: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिबे इल्म के किरदार से।
0: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की, मालूमात की, और बहस व तकरार हो आने वाले वक्त की,
1: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में UCP No. 1।
0: जब मिलती है लगन,
1: मेहनत,
0: कामयाबी और खुलूस,
1: तो बनती है
0: UCP की दुनिया।
1: आप सुन रहे हैं FM 92.6।
0: सुनते रहिए।
2: अस्सलाम वालेकुम सामेईन, FM रेडियो 92.6 यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब के FM रेडियो से आप सबको एहसान अहमद का सलाम। FOL के हफ्तावार प्रोग्राम में आज हमारे साथ मौजूद हैं जाहिद फ़ारूक साहिब। उनसे पूछेंगे कि आज एक आम इंसान के लिए किस तरह से ज़रूरी है कि वो कानून को समझे। तारुफ कराता चलूँ जाहिद साहिब का, तो जाहिद साहिब गुज़िश्ता 5 सालों से कानून की तालीम हासिल किए जा रहे हैं और ला मूड के अंदर एक नुमाया कामयाबी हासिल की है। इंटरनेशनल लेवल पर भी तालीमी सरगर्मियां अंजाम दे रहे हैं। फिल वक्त शोबाए तदरीस से ताल्लुक़ रखते जाहिद साहिब इंटरनेशनल स्कूल्स में कानून की तालीम दे रहे हैं, तो आज उनसे जानेंगे कि किस तरह से एक आम इंसान के लिए ज़रूरी है कि वह कानून को समझे।
3: जी, थैंक यू सो मच एहसान भाई, थैंक यू सो मच फॉर द काइंड इंट्रोडक्शन। आई वुड लव टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस। आई वुड लाइक कि आप पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करें, तो हम स्टार्ट करते हैं।
2: पहला मेरा सवाल ये होगा कि आप एक आम इंसान को क्या तजवीज़ पेश करते हैं कि वो किस तरह से कानून को समझे और उस पर अमल दरामद करे।
3: इस सवाल को एड्रेस करने के लिए आई थिंक पहले हमें यहाँ से स्टार्ट करना चाहिए था कि लॉ बेसिकली होता क्या है। जो हमारी लीगल स्टडीज़ हैं उसके अंदर ये एक काफ़ी डिबेटेबल क्वेश्चन है कि लॉ बेसिकली होता क्या है। तो डिफरेंट वैसे तो हमारे ऑथर्स हैं, स्कॉलर्स हैं, उसको हर कोई अपनी वर्डिंग में इसको डिफाइन करता है, लेकिन एक जो हमारे पास एक वेल स्ट्रक्चर्ड फिलहाल के लिए जो हमारे पास डेफिनेशन है उसमें ये कहा जाता है कि ये बेसिकली सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो कि सोसाइटी को रेगुलेट करने के लिए हमेशा स्टेट बनाती है। तो इन रूल्स को जानने के लिए डिफरेंट रूल्स होते हैं। जहाँ तक हमारे पाकिस्तान के लॉ का ताल्लुक है, तो पाकिस्तान के अंदर जितने भी लॉज बनते हैं वो हमेशा ही नेशनल असम्बली पहले पास करती है, उसके बाद सेनेट पास करती है, या फिर अगर सेनेट से ओरिजिनेट हो रहे हों तो फिर वो बाद में नेशनल असम्बली उसे पास करती है, बाद में एसेंट के लिए जाते हैं प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट जैसे ही वो एसेंट दे देता है तो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान इट बिकम्स अ लॉ। तो इस लॉ को ये भी रिक्वायरमेंट होती है कि जो भी लॉ बनाया जाएगा उसको ऑफिशियल गजट के अंदर पब्लिश किया जाएगा। सो बेसिकली जो ऑफिशियल गवर्नमेंट गजट्स हैं दोज आर द बेसिकली सोर्सेज ऑफ एवरी लॉ। तो जितने भी लॉज होते हैं वो पहले गजट के अंदर पब्लिश होते हैं। उसके अलावा जो नेशनल असेंबली की वेबसाइट है, आप वहां पर भी जाएं तो आपको जितने लेटेस्ट लॉज आ रहे होते हैं वहां पर भी मिल जाते हैं। उसके अलावा डिफरेंट और भी सोर्सेज हैं, जैसे पाकिस्तान कोड हो गया, अगर पंजाब के लॉज आप देखना चाह रहे हैं तो उसके लिए पंजाब कोड है, तो आप उस वेबसाइट पर भी जा सकते हैं और वहां से आपको काफी अच्छे और जो जो आप चाह रहे हैं, जिस लॉ को आप देखना चाह रहे हैं, आपको मिल जाएंगे।
2: जी साहिद साहब, बहुत शुक्रिया। आज AI का ज़माना है, सोशल मीडिया है हमारे पास, तो हमारे लिए तो बहुत आसानी हो गई है कि हम कानून को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। क्या आप ये समझते हैं कि सोशल मीडिया के ज़रिए भी हमें कानून की तालीम को हासिल कर लेना चाहिए?
3: एग्जैक्टली, आजकल सोशल मीडिया एक बहुत ही अच्छा टूल है जिसके थ्रू लॉ तो एक फील्ड है, मुझे लगता है कि कोई ऐसी फील्ड रह ही नहीं गई जिसको आप सीख नहीं सकते। अब जैसे आपने एग्जांपल दी AI की, AI एक बेस्ट टूल है आजकल के ज़माने में जिसके थ्रू आप कोई भी चीज़ सीख सकते हैं। आपने सिर्फ उसे एक प्रॉम्प्ट देना होता है जिसके थ्रू जो आपका रिक्वायर्ड आंसर होता है वो आपको उसी वक्त जनरेट करके दे देता है। तो इसी तरह आप लॉ भी AI के थ्रू सीख सकते हैं, लेकिन और जैसे कहा जाता है कि अक्सर हमारा वैसे दीन के लिए एग्जांपल दी जाती है कि अगर आप कुरान सीखना चाहते हैं तो किसी न किसी उस्ताद के अंडर, उनकी सुपरविजन के अंदर सीखें। तो आपको एग्जैक्टली लॉ शायद सही तरह से समझ ना आए इंडिपेंडेंटली खुद से पढ़ने से AI के थ्रू, लेकिन आपको एक क्रक्स, एक आइडिया ज़रूर हो जाएगा कि लॉ एक्चुअली है।
2: यानी सर, AI आज बतौर एक उस्ताद भी किरदार अदा कर रहा है हमारे मुआशरे में।
3: एग्जैक्टली सो बेसिकली ये एक जो पॉइंट है दैट इज डिबेटेबल कि वो उस्ताद के तौर पर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। मुझे ये लगता है कि आप AI से सही वाला आंसर लेने के लिए भी आपको उतनी ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है
2: जी।
3: अगर आपको पता नहीं है कि आपको आंसर क्या चाहिए तो आप वो आंसर ले ही नहीं सकते, मुझे ये लगता है। अगर मोस्ट ऑफ़ द टाइम मैं रिसर्च कर रहा हूँ, अगर मुझे किसी पॉइंट के ऊपर कोई असिस्टेंस चाहिए तो मोस्ट ऑफ़ द टाइम ऐसा होता है कि डिफरेंट आंसर आ रहे होते हैं। मोस्ट ऑफ़ द टाइम ऐसा हो रहा होता है कि उस पॉइंट के ऊपर जो डिफरेंट अदर ज्यूरिसडिक्शन होती हैं उनके लॉज AI प्रोड्यूस करके दे देता है मुझे। तो इसके लिए ऐसा होता है कि आपको ख़ुद से पहले नॉलेज होना चाहिए कि पाकिस्तान की, फॉर एग्जांपल आप अगर रिसर्च कर रहे हैं कि इसमें मुझे फ़लाँ लॉ चाहिए या फ़लाँ इस पॉइंट के ऊपर इंटरप्रिटेशन चाहिए या रेलिवेंट जजमेंट्स एट्सेट्रा चाहिए, आल दो ये जजमेंट्स वगैरह की एक्सेस नहीं होती। लेकिन अगर आपको पता नहीं है, ख़ुद को नहीं पता कि पाकिस्तान के अंदर कौन से लॉज लागू हो रहे हैं, तो उस सिचुएशन में अगर AI आपको कोई भी आंसर दे देगा आपने उसको मान लेना है। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि जो इंडियन लॉज हैं वो आपको वो प्रोड्यूस करके दे देता है कि ये देखें ये आपका आंसर है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम वो गलत भी होते हैं।
2: अच्छा सर ये बताइएगा कि एक आम इंसान जब कोई जुर्म कर लेता है, आया हम में एक अशरफुल मखलूकात ज़रूर हैं लेकिन कहीं जुर्म की कहीं गुंजाइश तो हमारे अंदर मौजूद है, तो क्या समझते हैं आप कि एक जब इंसान जुर्म कर ले तो वो इतना परेशान, पाकिस्तान के अंदर खास तौर पर किस तरह से वो परेशान हो जाता है और उसको क्या अपनी एक लाहे अमल अपनाना चाहिए कि वो अपने आप को उससे निजात दे ले या अपनी वो सज़ा को मुकम्मल तरीके से कर ले? क्योंकि हमारे यहाँ कोई भी जुर्म हो जाए तो लोग बहुत ज़्यादा परेशानी के आलम में रहते हैं और वकला तो फिर हैं जहाँ पर बहुत अच्छे, आप जैसे भी हैं तो वहाँ पर कुछ हमारे करिंदे भी मौजूद हैं जो बस लपेटने लपेटने में रहते हैं कि बस क्लाइंट हमारा आए तो पकड़ें उसको और उससे पैसे झंझोड़ें। तो सर ऐसे में एक आम इंसान के लिए क्या रहनुमाई आपकी होगी हमारे लिए?
3: अच्छा तो जहाँ से आपने स्टार्ट किया मैं वहीं से दोबारा स्टार्ट करना चाहूँगा कि जब जुर्म हो जाता है तो इंसान परेशान होता है, तो मैं इसके लिए पहले आपको बताना चाहूँगा, डिस्कस करना चाहूँगा, चूँकि आप भी एक माशाल्लाह से इंटेलेक्चुअल हैं और लॉ के स्टूडेंट हैं तो आपको भी ज़रूर आइडिया होगा कि ये जो क्राइम बनाए जाते हैं बेसिकली सोसाइटी के अंदर डेटरेंस कॉज करने के लिए बनाए जाते हैं, कि अगर एक डिलिंक्वेंट बिहेवियर अगर एक बंदा शो कर रहा है तो उसको कर्टेल करने के लिए सर्टेन क्राइम्स बनाए जाते हैं ताकि उस बंदे के अंदर एक परेशानी इंड्यूस की जाए, ताकि एक तो वो उस

0: जो लीगल सिस्टम है पाकिस्तान का वो अनफॉर्चुनेटली ऐसा ही है कि अदालतें अगर काम करना चाह रही हों तो वकील काम नहीं करना दे रहे होते। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि दूसरी पार्टी चाह रही होती है कि इसको लिंगर ऑन किया जाए ताकि उनका जो राइट है उसको प्रोटेक्ट किया जाए फॉर द टाइम बीइंग।
1: जी
0: तो ऐसे ही चल रहा है
1: सर। आपका कहना है कि कभी जब अदालतें काम करने के मूड में हैं तो वकला बरादरी हमारा साथ नहीं देती, अगर वकला बरादरी साथ दे रही है तो अदालतें साथ नहीं देती।
0: एग्जैक्टली ऐसे ही होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे ही होता है। लेकिन अगर आप देखें क्लोजली, अगर इस बात को जाके देखें तो बेसिकली पीछे वकला के पीछे पार्टीज होती हैं। फॉर इंस्टेंस अगर आपने किसी की प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा किया हुआ तो जितना टाइम आपको मिलेगा वहाँ पर रहने के लिए आप तो उतना ही चाहोगे कि इस केस को इतना लिंगर ऑन किया जाए ताकि जितना देर तक फैसला आएगा उतनी देर तक मैं यहाँ पर रह सकूँ।
1: जी, जी,
0: तो बेसिकली पीछे पार्टीज होती हैं जो ये चाह रही होती हैं। लेकिन यही होता है, लेकिन मुझे लगता है कि हमारा जो लीगल सिस्टम है उसके अंदर काफ़ी इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है।
1: जी जाहिर साहब,
0: जब तक ये इम्प्रूवमेंट नहीं आती तो जो आम आदमी है वो सफ़र ज़रूर करता रहेगा।
1: जी जाहिर साहब, बहुत शुक्रिया। अभी तक के लिए सामेईन के लिए बहुत मुफीद रही होगी आपकी गुफ्तगू। अभी हम जानेंगे बकिया ब्रेक के बाद कि एक आम इंसान पर अगर FIR हो जाए तो उसको सबसे पहले क्या करना चाहिए और किस तरह से अपने वकला को या अपने वकील को करना चाहिए।

0: लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ऐसा करना चाहिए कि अगर वो आप ऐसे केस के अंदर फंस गए हैं तो आपको बेल करवानी चाहिए
1: जी।
0: तो उसके लिए आपको डेफिनेटली किसी ना किसी लॉयर के पास जाना होगा
1: जी।
0: जब आप बेल करवा लेते हैं तो उसके बाद आप आपको पुलिस कुछ नहीं कह सकती। जब आप बेल करवा लेंगे तो उसके बाद डिफरेंट रेमेडीज होती हैं जो आपको फर्दर और भी अवेलेबल होती हैं जो आप ले सकते
1: जी हैं। जी साहब, अभी बेल का जिक्र हुआ तो बेल करवाना आखिर क्यों जरूरी रहता है हमारे लिए?
0: जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, तो सर्टेन ऑफेंसेस ऐसे होते हैं हमारे पाकिस्तान के क्रिमिनल लॉ के अंदर जो के कॉग्निजेबल होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो नॉन कॉग्निजेबल होते हैं
1: जी।
0: अब कॉग्निजेबल का मतलब ये होता है कि उसके अंदर पुलिस के पास डिस्क्रिशन होती है कि जैसे ही वो ऑफेंस रिपोर्ट हो वो आपको अरेस्ट कर सकती है
1: जी।
0: अगर आप बेल नहीं करवाएंगे और आपका जो ऑफेंस है दैट इज कॉग्निजेबल इन नेचर, मतलब वो काबिले दस्ते अंदाज ये पुलिस आ रहा है, तो उस सिचुएशन में पुलिस आपको अरेस्ट कर सकती है। तो उस अरेस्ट से बचने के लिए जरूरी है कि आप बेल करवा लो। जब आप बेल करवा लेते हैं तो उस सिचुएशन के अंदर कोर्ट दरमियान में आ जाती है जो ये ऑर्डर पास कर रही होती है कि जब तक इस केस का फैसला ना हो जाए, या आप बेल बॉन्ड्स दे देते हो, सिक्योरिटी बॉन्ड दे देते हो, बेसिकली आप एक गारंटी दे रहे होते हो कोर्ट को या फिर पुलिस को कि आप जब जहां मुझे बुलाएंगे, जहां पर मेरी इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत होगी, मैं वहां पर पेश होऊंगा
1: जी।
0: तो बेसिकली आपकी जो प्रेजेंस है उसको मेंटेन करने के लिए ये बेल का एक प्रोसीजर रखा गया है ताकि सिक्योरिटी हो कि आप भागेंगे नहीं एटसेट्रा, तो ये रिक्वायरमेंट होती है
1: जी। ठीक सर। सर, अगर पुलिस इन मामलात में हमारा साथ ना दे रही हो, हमारे साथ अनफेयर कर रही हो, क्योंकि अदालती निज़ाम तो कुछ हमारा कदरे वो कहते हैं ना कि अदालतों के चक्कर आपको लग जाएं लेकिन आपको थानों के चक्कर ना लगें, तो क्या थाना कल्चर में और इस तरह से अगर पुलिस हमारे साथ अनफेयर कर रही है तो सर हम उसके लिए क्या रेमेडीज लेंगे?
0: तो अगेन बीइंग अ लेमैन आप खुद तो कुछ नहीं कर सकते
1: जी।
0: लेकिन आपको डेफिनेटली किसी एक लॉयर को अप्रोच करना चाहिए, तो वो लॉयर आपको फर्दर गाइड कर सकता है कि कैसे कौन कौन सी रेमेडीज अवेलेबल होती हैं। लेकिन उनमें से कोई एक मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे हमारे पास कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के अंदर 22A6 है, एक प्रोविजन है, उसके तहत आप जस्टिस ऑफ पीस को एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं कि पुलिस इज ट्रीटिंग अस अनफेयरली, और उस सिचुएशन के अंदर जो रेलिवेंट ऑर्डर्स होंगे वो जस्टिस ऑफ पीस इशू कर सकते हैं। अब मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे हो रहा होता है कि आपका कोई अफेंस हो गया होता है आपके खिलाफ, लेकिन जब आप पुलिस के पास जाते हैं तो वो FIR नहीं काट रहे होते, या FIR काट लेते हैं तो वो फिर इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहे होते, अगर इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं तो वो फिर अनफेयर होते हैं
1: जी।
0: तो इन सिचुएशन को मीट करने के लिए लॉ ने ये प्रोविजन बना दी है, जैसे 22A6 हो गई। अब इसके तहत आप जस्टिस ऑफ पीस को एप्लीकेशन दे सकते हैं और जस्टिस ऑफ पीस ऑर्डर दे देंगे, उसके थ्रू इम्प्लीमेंट हो जाएगा। अगर उससे भी काम नहीं हो रहा तो उसके बाद भी आपके पास रेमेडीज अवेलेबल होती हैं, जैसे आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग इनिशिएट करवा सकते हो, उसके अलावा फिर भी अगर नहीं हो रहा तो उसके बाद आप रिट फाइल कर सकते हो बिफोर द हाई कोर्ट। अगर आप तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपके पास रेमेडी सारी अवेलेबल है
1: जी।
0: लेकिन हमारी जो पुलिस है, जो हमारा सिस्टम है, वो अनफॉर्चुनेटली ऐसा है कि मोस्ट ऑफ द टाइम वो पुलिस नहीं मान रही होती जी, कोर्ट के ऑर्डर्स को भी नहीं मान रही होती, लेकिन उसके फर्दर भी कुछ रेमेडीज अवेलेबल होती हैं इन द फॉर्म ऑफ कंटेम्प्ट एंड रिट पिटीशन एटसेट्रा
1: जी। सामीन, अभी आपने जाना कि किस तरह से कानून हमारे माशरे को रेगुलेट कर रहा है और किस तरह से हमने अपना किरदार माशरे की सरखुरुई के लिए अदा करना है। तो अभी जाहिद साहब, एडवोकेट जाहिद फारूक साहिब हमें बता रहे थे कि किस तरह से आपने FIR के बाद की प्रोसीडिंग्स को देखना है, और अगर पुलिस आपके साथ अनफेयर करती है तो उन्होंने बहुत एक बेसिक सी आपको रेमेडी बताई है, जस्टिस ऑफ पीस को आप एक एप्लीकेशन फॉरवर्ड करेंगे जिसकी वजह से आपको रेमेडीज़ मिल सकती हैं। तो सर, अभी एक और सवाल है, बहुत से सामीन ये पूछते हैं कि आज सोशल मीडिया का दौर है, आप भी जानते हैं, हम भी इस्तेमाल करते हैं, तो सोशल मीडिया पर कोई आपको बदनाम कर रहा है, आपका नाम को ख़राब कर रहा है, तो आया आजकल देखने में मिलता ज़रूर है बहुत ज़्यादा। तो सर, ये अगर बदनामी आपकी कोई कर रहा है या कोई आपको डीफेम कर रहा है, तो सर इसके बारे में क्या कहेंगे आप?
0: बिल्कुल सर। अच्छा, वैसे जो सोशल मीडिया के ऑफेंसेस होते हैं उनके लिए वैसे तो सेपरेट लॉ है, दैट इज़ पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक कमीशन, इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट, उसके उसके थ्रू ये सारी रेमेडीज़ आपके पास अवेलेबल होती हैं, आप FIA को भी रिपोर्ट कर सकते हैं और ये वाली रेमेडीज़ अवेलेबल हैं। लेकिन अगर आप स्पेसिफिकली डेफेमेशन के लिए जाना चाह रहे हैं तो उसके लिए हमारे पास ऑलरेडी एक और लॉ है पड़ा, दैट इज़ पाकिस्तान पीनल कोड, उसके अंदर सेक्शन 499 है दैट डील्स विद डेफेमेशन। और अगर आपको लगता है कि आपको किसी ने डिफेम किया है तो इस सिचुएशन के अंदर आपको देखना ये होगा कि आप रिपोर्ट कर सकते हैं टू द पुलिस, तो आपके पास रेमेडी ऑलरेडी अवेलेबल है। अगर आप कोई लॉ सूट फाइल करना चाह रहे हैं, फॉर इंस्टेंस आप चाह रहे हो कि आपको कोई हर्जाना पे किया जाए, आपको पैसे की सूरत में आपको कंपनसेट किया जाए, तो इन दैट सिचुएशन आप डेफेमेशन का लॉ सूट भी फाइल कर सकते हैं बिफोर सिविल कोर्ट। तो आपके पास दोनों रेमेडीज अवेलेबल हैं।
1: जी सामीन, अभी आपने जाना कि अगर आपको कोई डीफेम कर रहा है सोशल मीडिया पर तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कोई तंगी है या कोई परेशानी है किसी भी इंसान से तो आप ये बताई गई रेमेडीज़ ले सकते हैं। तो अभी हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ दोबारा हाजिर होंगे, अभी तक के लिए इजाज़त दीजिए, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।

0: ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए एफएम 92.6 यूसीपी की दुनिया।
1: वेलकम बैक जी, दोबारा से हाजिर है आपके साथ यूसीपी की दुनिया एफएम 92.6 फैकल्टी ऑफ लॉ के प्रोग्राम में। जाहिद साहब हमारे साथ मौजूद रहे हैं, तो उनसे दोबारा से एक सवाल और उनसे रहनुमाई ज़रूर तलब करेंगे कि हमारे पास कानून की तालीम के ऊपर ज़ोर इस कदर ज़्यादा नहीं दिया जाता जिस तरह से हमारी बकिया तालीम पर ज़ोर दिया जाता है। तो सर आप क्या कहना चाहेंगे कि आया हमारे स्कूलिंग में या हमारे कॉलेज की जो स्टडी है उसके अंदर भी कानून की तालीम को शामिल कर देना चाहिए ताकि आगाही सर ज़रूर रहे ताकि
2: तो क्वेश्चन तो बहुत अच्छा है लेकिन मुझे लगता है ये ज़्यादा ओपिनियनेटेड क्वेश्चन है और मेरा आंसर भी ओपिनियन बेस्ड ही होना चाहिए। तो मैं एक अपनी ओपिनियन देना चाहूँगा इसके अंदर। तो जो हमारा पाकिस्तान है ये एक डॉक्यूमेंट के ऊपर चलाया जा रहा है, दैट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, इसका रोल क्या है? ये बेसिकली वो डॉक्यूमेंट है जिसके थ्रू जितने भी ऑर्गन ऑफ द स्टेट हैं वो काम कर रहे हैं कि पुलिस अगर काम कर रही है तो उसे किस कैसे पावर्स मिली हैं, इसी तरह प्रेसिडेंट को वो रोल कहाँ से मिला है, प्राइम मिनिस्टर को कहाँ से मिला है, पार्लियामेंट कहाँ से आई है, लोगों के क्या फंडामेंटल राइट्स हैं, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसीज क्या हैं, लॉ बनना है तो कैसे बनाया जाएगा,
1: बिल्कुल सर,
2: एटसेट्रा। अब ये एक बेसिक डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर ये सारी चीज़ें बताई गई हैं।
1: बिल्कुल।
2: अब ये भी लॉ है कि इसके खिलाफ कोई और लॉ नहीं बनाया जा सकता। अब कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये बनाया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के थ्रू, ठीक है, मींस कि उसको पास करने के लिए 2/3 मेजॉरिटी की ज़रूरत थी। इसको ग्रैंड नॉर्म लॉ भी कहा जाता है, जो मेन डॉक्यूमेंट होता है, इसके खिलाफ वर्जी नहीं की जा सकती। जो पार्लियामेंट अदरवाइज लॉ बनाती है ये सिंपल लेजिस्लेशन के थ्रू बनाती है। अब उसके लिए वही रिक्वायरमेंट ज़रूरी नहीं होती जो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए ज़रूरी थी। कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए 2/3 मेजॉरिटी की ज़रूरत थी, लेकिन जो सिंपल लेजिस्लेशन होती है उसके लिए आपको सिंपल मेजॉरिटी चाहिए होती है। मींस कि अगर 342 मेंबर्स हैं तो आपको 171 और 172 मेंबर्स चाहिए होंगे एक लॉ बनाने के लिए। और वैसे भी ये हमेशा ज़रूरी नहीं होता कि 172 होना चाहिए, वर्ड यूज़ हुआ है कोरम पूरा होना चाहिए और उसके साथ साथ मेजॉरिटी उस लॉ के हक के अंदर वोट दे रही हो। फॉर इंस्टेंस अगर टोटल मेंबर हैं 342 तो ये ज़रूर मैटर ये करेगा कि उस वक्त पार्लियामेंट के अंदर कितने अवेलेबल हैं। अगर फॉर इंस्टेंस 200 बंदा अवेलेबल है, 200 MNAs अवेलेबल हैं, तो उसके लिए उस एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को लॉ बनाने के लिए आपको 101 बंदा चाहिए होगा। तो ये सिंपल डॉक्यूमेंट बन जाएगा, एक लॉ बन जाएगा, सिंपल लॉ जिसे हम कहते हैं। लेकिन ऑन दी अदर हैंड जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, सुप्रीम डॉक्यूमेंट इसे कहा जाता है। तो उसको बनाने के लिए या उसके अंदर अमेंडमेंट करने के लिए आपको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होगी।
1: जी सर।
2: सो बेसिकली ये जो आपके वैल्यूज़ हैं वो उस डॉक्यूमेंट के अंदर प्रोवाइड की गई हैं। तो मुझे ये लगता है कि एक जो आम बंदा है उसको उसकी स्कूलिंग के अंदर ही ये सारे उसके जो राइट्स हैं, उसको वो किस स्टेट के अंदर रह रहा है, उसका क्या स्ट्रक्चर है, जैसे डेमोक्रेसी, फेडरलिज्म, ये सारा कुछ उसे पता होना चाहिए ताकि उसे पता हो कि वो कहाँ पर रह रहा है। लेकिन जो एक मेजर लॉ की स्टडी होती है, जैसे क्रिमिनल लॉ हो गया, सिविल लॉ हो गया, अब मुझे नहीं लगता कि उसको पढ़ाने की ज़रूरत है, बिकॉज बाकी भी और काफ़ी फील्ड हैं जिनको आपको जानने का राइट तो ज़रूर है अंडर आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, स्पीच एक्सेट्रा, लेकिन वो हर चीज़ आपको जानने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे अब जो MBBS है, डॉक्टर है, फिजिशियन है या फिर साइंटिस्ट हैं, उनकी भी पढ़ाई मुझे बहुत अच्छी लगती है, लेकिन मैं उसे पढ़ नहीं सकता बिकॉज हर किसी के सरकमस्टांसेस वगैरह डिफरेंट होते हैं और हर कोई डिफरेंट फील्ड परसू कर रहा होता है। तो मुझे लगता है जो बेसिक नॉलेज है वो ज़रूर देना चाहिए, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन की तालीम है वो ज़रूर देनी चाहिए। आपको बताना चाहिए कि आपके फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से हैं, पाकिस्तान कौन से लॉज के ऊपर काम कर रहा है, आपके ऑर्गन कौन कौन से हैं, एटसेट्रा, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए।
1: जी बिल्कुल सर। अच्छा सर, कॉन्स्टिट्यूशन की बात अगर हो ही रही है तो इसकी बुनियादों की बात कर लीजिए कि कॉन्स्टिट्यूशन की बुनियाद क्या रही और किस तरह से उस बुनियाद की धज्जियाँ उड़ा दी गईं। आप भी बेहतर तरीके से जानते हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसकी बुनियाद इस्लामिक प्रोविजन्स हैं, कि कोई भी हमारी आने वाली प्रोविजन कोई भी कानून इस्लाम के खिलाफ नहीं जाएगा। सर अभी बहुत सारे कानून इस तरह के मौजूद हैं जिसके अंदर इस्लामी सजाएं या इस्लामी कानून उस तरह से राइजुल अमल नहीं है जिस तरह से होना चाहिए था।
2: अच्छा तो आप बात तो ठीक कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे जितने भी लॉज बनते हैं तो अगर इन केस कोई डिस्प्यूट वगैरह हो कि ये लॉज अन इस्लामिक हैं तो हमारे पास दो फोरम अवेलेबल होते हैं। पहला है काउंसिल ऑफ इस्लामिक इंटरेस्ट, वो एक काउंसिल है जिसको पार्लियामेंट भेज सकती है, प्रेसिडेंट भेज सकता है कि आप बता दें, आप हमें एडवाइज कर दें कि क्या ये लॉ इस्लामिक है कि नहीं है। फॉर इंस्टेंस अगर पार्लियामेंट के अंदर डिबेट शुरू हो जाती है कि जी ये जो लॉ आप बनाना चाह रहे हैं ये तो है ही अन इस्लामिक, तो उस सिचुएशन के अंदर स्पीकर भेज सकता है या पार्लियामेंट रेफर कर सकती है टू द काउंसिल ऑफ इस्लामिक इंटरेस्ट, वो बताएंगी कि ये लॉ इस्लामिक है या नहीं है। जब तक उनकी कंसेंट आएगी, उनकी कंसेंट आने के बाद या उन्होंने जब ओपिनियन देनी है उसके बाद ही लॉ बनाया जाता है। उसके अलावा उधर से जो भी आए, वैसे मैं आपके लिए बता रहा हूँ कि उनका जो भी फैसला हो या वो जो भी मशवरा दें वो बाइंडिंग नहीं होता पार्लियामेंट के ऊपर, पार्लियामेंट फिर भी कॉम्पिटेंट होती है कि वो लॉ बना सकती है। लेकिन इसके बाद आपके पास एक और ऑप्शन अवेलेबल है, दैट इज़ फेडरल शरिया कोर्ट, आप उसके अंदर वो लॉ को चैलेंज कर सकते हैं। अगर आप उधर चैलेंज करते हैं तो आप सेटिसाइड करवा सकते हैं, अगर फेडरल शरिया कोर्ट उसे सेटिसाइड करती है तो इट मीन्स के वो लॉ अब है ही नहीं।
1: जी जाहिर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और हमारी सामीन की बड़ी पुरजोर फरमाइश थी कि कानून के बारे में हमारी रहनुमाई की जाए। तो अभी तक के लिए जो रहनुमाई रही है हमारी कि एक आम इंसान कानून को कैसे समझेगा, किस तरह समझेगा, और FIR जैसा एक बुनियादी अमल जो हमारे आए रोज़ हमें देखने को मिलता है उसकी हमने प्रोसीडिंग्स कैसे करनी है, हमने ये भी आपसे आज के दिन में जाना, और आखिर में आपने कानून की तालीम की अहमियत को ऊपर चार चांद लगाए, रोशन किया उसको। तो बहुत शुक्रिया आपके वक्त का भी, आपने अपना वक्त दिया हमें आज FM रेडियो 92.6 की बदौलत हमें बहुत सारी रहनुमाई आपके वसीले से मिली।
2: जी थैंक यू सो मच, इट वाज प्लेजर टू बी हियर, ऑलवेज देयर फॉर योर गाइडेंस, थैंक यू सो मच।
1: जी सामिन, बहुत शुक्रिया आपके सुनने का FM 92.6 UCP की दुनिया फैकल्टी ऑफ लॉ के अगले प्रोग्राम में मिलते हैं आपसे। अभी तक के लिए इतना ही, खुदा हाफिज़।

0: सुरौरतान सुरौरतान ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास सिर्फ FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।
1: Listen to me, baby. You know I'm always thinking about you. So why don't you just forget about everything and come on to me now?

when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCP ki duniya.

0: एक नया अंदाज,
1: एक नई सोच,
0: एक नई पहचान,
1: एक नई लगन।
0: यूसीपी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान।
1: हम देते हैं पाकिस्तान

0: If you want to stay connected to the latest updates of your country, stay connected to University of Central Punjab FM 92.6 UCP Ki Duniya.
1: अल्जाइमर एक तेजी से बढ़ने वाला मर्ज है जो दिमाग के खुलियों, आसाब और दीगर अहम अफाल को नुकसान पहुंचाता है। एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में अल्जाइमर के मरीजों की तादाद 10 लाख है। अमूमन बड़ी उम्र के अफराद इस बीमारी में जल्द मुब्तला हो सकते हैं। अल्जाइमर जदीद तिब के लिए एक अहम चैलेंज है क्योंकि अभी तक इस बीमारी का इलाज दरियाफ्त नहीं हो सका। इससे सिर्फ एहतियात मुमकिन है। अपने प्यारों का ख्याल रखें और अल्जाइमर से मुतल्लिक मजीद मालूमात हासिल करने के लिए अल्जाइमर केयर सोसाइटी को info@alz.org.pk पर ईमेल करें या हमारे फोन नंबर 04233111877 पर राब्ता कीजिए।

0: मुझे डायबिटीज? मैं तो बड़ा फिट हूँ। डायबिटीज तो मोटे लोगों को होती है। हम तो खालिस खुराक खाते हैं, हमें नहीं होगी डायबिटीज।
1: डायबिटीज वो तो मीठा खाने से होती है, इसीलिए मीठा खाती नहीं।
0: डायबिटीज तो सिर्फ बुढ़ापे में होती है।
2: मैं भी यही सोचता था, मगर सच तो ये है कि पाकिस्तान डायबिटीज के हवाले से दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क है। इसीलिए अपनी सेहत पर गौर करें। अगर आपको इनमें से कोई भी अलामत महसूस हो रहे हो तो फौरन अपने डॉक्टर से मशवरा करें। डायबिटीज वसाइल और आमदनी से नहीं बल्कि एक्शन से कंट्रोल हो, यानी मतवाजन गजा, रोजाना एक्सरसाइज और डॉक्टर की तजवीज की हुई दवा। याद रखिए, अगर डायबिटीज से जीतना है तो वक्त पर एक्शन लेना है।

बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह बरसगीर पाको हिंद में दीन इस्लाम के फैलाने में जो किरदार औलिया कराम ने अंजाम दिया वो नाकाबिले फरामोश है। इन्हीं हस्तियों में से एक हस्ती बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह भी हैं, जो कि 1103 हिजरी 1291 को पांडू के जिला कसूर के एक सैयद घराने में पैदा हुए। इनके वालिद हजरत सखी मोहम्मद दरवेश कूच गिलानिया से तरके वतन करके पांडू आ गए और यहाँ दरसो तदरीस का सिलसिला शुरू किया। आपका सिलसिला नसब हजरत ख्वास पाक हजरत अब्दुल कादिर जिलानी महबूब सुबहानी रहमतुल्लाह अलैह से जा मिलता है। हजरत सैयद अब्दुल मारूफ बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह मर्द हकानी की इब्तदाई तालीम और तरबियत आपके वालिद माजिद हजरत सैयद शाह मोहम्मद दरवेश रहमतुल्लाह अलैह के ज़ेरे साया हुई। बाद अज़ां आला तालीम के लिए अपने वक्त के इल्मी मरकज कसूर तशरीफ ले गए और मुर्शद कामिल हजरत शाह अनायत कादरी लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह से बैत होकर रूहानी तालीम हासिल की। आप वहदतुल वजूद की मंजिलों को जानते थे, इसलिए हर शेह को मज़र खुदा जानते थे, मुर्शद के लिए इंसान का दर्जा रखते थे। आप रहमतुल्लाह अलैह ने अपने कलाम अशार और काफियों के जरिए दीन मतीन की खिदमत की और पूरी जिंदगी तबलीग हक में गुजार दी।

0: नशा न परेशानियां खत्म करता है न इसका जरूर हमेशा रहता है। ये एक लम्हे की कमजोरी है जो सारी जिंदगी का रोग बन जाती है। बातला इल्मी जहालत और हमाकत से शुरू होती है और सारे खानदान को तबाह कर देती है। ऐसी कोई खाने पीने लगाने या सरूर दिलवाने वाली अशिया का इस्तेमाल न करें जिसमें नशा हो। वालिदैन, असातिज़ा और दोस्त बच्चों पर नजर रखें। हंसी मजाक में की गई हरकत आपकी सांसें भी खत्म कर सकती है। नशे से इनकार, जिंदगी से प्यार। मंशियात की सरगर्मियों की रोकथाम के लिए हमारी हेल्पलाइन पर राबिता करें।
1: सुन रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब FM 92.3।

0: डेंगू मच्छर पानी में जन्म लेता है। इसकी अफजाइश के मराहिल से मुकम्मल आगाही डेंगू के खात्मे के लिए जरूरी है, लिहाजा पानी की टैंकी और ड्रम वगैरह जिनमें साफ पानी हो अच्छी तरह ढांप कर रखें। इसके अलावा घर, दफातर, दुकानों और किसी जगह कूड़ा करकट या फालतू अशिया जमा ना होने दें। घरों में मच्छर मार और लार्वा कश केमिकल का स्प्रे करवाएं। इस्तेमाल शुदा बोतलों, प्लास्टिक के थैलों और इस्तेमाल शुदा टायरों में हर गिज पानी जमा ना होने दें। माहौल खुश्क और साफ, डेंगू से मुकम्मल निजात। ये पब्लिक सर्विस मैसेज महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर और यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब के तआवुन से पेश किया जा रहा है।
1: ट्वेंटी फोर सेवन ओनली ऑन FM 92.6 UCP की दुनिया।

0: And now, you are going to listen an exclusive documentary on 92.6 FM UCP Ki Duniya.
1: आप सुन रहे हैं हमारी आवाज़, हमारी पहचान FM 92.6.

ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

किसी भी ऐसी कॉल या SMS का जवाब ना दें जिसमें आपसे जाती या मानी मालूमात मांगी जा रही हो, रकम भिजवाने का कहा जाए या इनाम का लालच दिया जा रहा हो। ये एक धोखा है। सर्विस प्रोवाइडर को मुश्तबा नंबर बंद करने के लिए रिपोर्ट करें। PTA को शिकायत दर्ज करवाने के लिए PTA की वेबसाइट www.pta.gov.pk पर मौजूद कंप्लेंट फॉर्म के जरिए या PTA CMS मोबाइल ऐप इंस्टॉल करें। WhatsApp पर ऐसे धोखाधड़ी पर मबनी पैगामात मौसूल होने की सूरत में WhatsApp को रिपोर्ट करें।

0: आप सुन रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब FM 92.6 UCB की दुनिया।
1: अस्सलामुअलैकुम सामईन, आप सुन रहे हैं FM 92.6 UCP की दुनिया और मैं हूं आपका मेज़बान हमज़ा अहमद रज़ा। मीडिया एंड मैस कम्युनिकेशन फैकल्टी आर में आज हमारे प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करेंगे हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट मीडिया एंड मैस कम्युनिकेशन डॉक्टर आतिफ अशरफ साहब। सर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और आज के इस प्रोग्राम में सर से हम बात करेंगे कि सहाफत क्या होती है, जर्नलिज्म बेसिकली है क्या, और बहुत वसी तजर्बा रखते हैं सर मीडिया के अंदर, और उन सर से जानते हैं कि सर सबसे पहले तो ये बता दीजिएगा कि जर्नलिज्म क्या होती है, सहाफत कहते किसे हैं।
2: जी बहुत शुक्रिया हमजा। जर्नलिज्म या सहाफत जो है बेसिकली एक पब्लिक सर्विस है और इसका जो बुनियादी मकसद है वो ये है कि मुआशरे में अगर कुछ बुरा हो रहा है तो बुरा होने से पहले पहले विसल ब्लो की जाए, ढोल बजाया जाए और पॉलिसी मेकर्स को जो आपके जो मुक्तदरा है जो कि आपकी स्टेट के फैसले करती है उस तक बात पहुंचाई जाए, आवाम की बात पहुंचाई जाए। और बेसिकली जर्नलिज्म जो है, सहाफत जो है, एक पुल का काम करती है आवाम और हुकूमत के दरमियान, ताकि ऐसा कोई मिसहैप, ऐसा कोई हादसा जो एक सहाफी समझता है कि हो सकता है, उस हादसे से पहले पहले प्रिकॉशनरी मेजर्स लेके उसको बचाया जा सके, ऑडिट किया जा सके, अकाउंटेबिलिटी की जा सके, और जो मुआशरे में गलत चीजें हो रही हैं, स्टेट के अंदर इदारों में हो रही हैं, मुआशरती लेवल पे हो रही हैं, समाजी लेवल पे हो रही हैं, उनको हाईलाइट किया जाए और उनके तदारुक के लिए आवाज़ बुलंद की जाए। तो सहाफत एक अजीम शोबा है जिसका मकसद ही एक, जिस तरह कुछ लोग कहते हैं ये पैगंबरी शोबा है,
1: बिल्कुल इसी तरह सुना,
2: जिस तरह आप तबलीग करते हैं, एक अच्छे काम की तरफ लोगों को लेके आते हैं, इसी तरह आपने मोबिलाइज करना है, अवेयर करना है, एजुकेट करना है, इन्फॉर्म करना है मैसेज को, और उन मैसेज की जो आवाज़ है, जो खलके जो कहते हैं ना कि जो आवाज़ खल्क है, उसको आपने पहुँचाना है मुक्तदरा तक, ताकि जो प्रॉब्लम्स हैं सोसाइटी के, उनके अपने प्रॉब्लम्स, उनको एड्रेस किया जा सके।
1: बिल्कुल, जो अपनी आवाज़ खुद नहीं बन सकते उनकी आवाज़ बनने का नाम है सहाफत मीडिया के अंदर। और सर आजकल की जो नौजवान नस्ल है वो इस चीज़ में इतना इंटरेस्ट शायद नहीं ले रही मीडिया में, या शायद कहते हैं कि इसका स्कोप नहीं है, या आप इस चीज़ को एलैबोरेट कीजिएगा कि कितना स्कोप है और आजकल की नौजवान को अवेयर होना, इन्फॉर्म होना कितना ज़रूरी है मीडिया से खास तौर पर।
2: देखिए जर्नलिज्म जो है ना बेसिकली ये सिर्फ हालात हाजरा की रिपोर्ट करना नहीं है, जर्नलिज्म इज ऑल अबाउट इन्वेस्टिगेशन। जो कुछ दुनिया में हो रहा है उसको रिपोर्ट करना आजकल वो जर्नलिज्म तो बहुत ही बेसिक लेवल का जर्नलिज्म है जो आजकल हर यूजर सोशल मीडिया का वो अपनी अपनी तई वो कर रहा है। लाइक अगर कुछ इवेंट हो रहा है आप फेसबुक लाइव हो जाते हैं, आप कोई दारा अपने अकाउंट के ऊपर, सोशल मीडिया अकाउंट के ऊपर अपनी पोस्ट कर देता है तो वो इवेंट की रिपोर्टिंग तो हो रही है, लेकिन असल जो जर्नलिज्म है वो इन्वेस्टिगेशन है, डाइविंग डीप इनटू अ सिचुएशन, वहां से फैक्ट्स चेक करके, रिसोर्सेज के साथ बात करके, प्रॉपर एट्रीब्यूशन के साथ, आप फैक्ट चेकिंग के साथ साथ आप फैक्ट्स को पहले उनको एक्सप्लोर करें, फिर बात की गहराई तक पहुंचें, फिर उससे इन्वेस्टिगेट करें जो आपको जहां जहां से कोई गैप नजर आते हैं कि इस इंफॉर्मेशन के ये गैप्स हैं, उन गैप्स को फिल करने के लिए डिफरेंट लोगों के पास, स्टेक होल्डर्स के पास जाएं, जो रेलिवेंट स्टेक होल्डर्स हैं उनके वर्जन लें, फिर आप एक कंप्लीट पिक्चर के साथ आए। तो जब आप वो इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो वो होगी जर्नलिज्म। तो बेसिकली इसका जो स्कोप है ना जर्नलिज्म का, ये सिर्फ अखबार और टीवी के हद तक नहीं है। आजकल जो सबसे बड़ी खबर है वो खबर नहीं है जो सब चला रहे हैं, जो सबसे बड़ी खबर वही खबर है जो सिर्फ आपने एक्सप्लोर की है, वो आपकी एक्सक्लूसिव खबर है, वो आपका स्कूप है, इसे बाकी लोग, बाकी दुनिया नहीं जानती,
1: नहीं जानते।
2: और इसको अनकवर करना, रिसर्च करना, एक्सप्लोर करना, ये वो तमाम स्किल्स हैं जो एक जर्नलिस्ट को रिक्वायर्ड है। अगर वो उस चीज को अनकवर करता है जिससे एक बहुत बड़ा एक मुआशरे का छुपा हुआ पहलू सामने आता है और उससे मुआशरे में बेहतरी आ सकती है, तो ये जर्नलिज्म। मिसाल है आपने सुना का पनामा लीक्स एक स्कैंडल था,
1: बिल्कुल बिल्कुल,
2: ठीक है, ऑफशोर कंपनीज निकली थी, तो किन्होंने किया था ये काम, ये बहुत सारे ग्लोबल जर्नलिस्ट ने मिलके, एक कंसोर्शियम ने मिलके एक बहुत बड़ा मेगा डेटा को एक्सप्लोर किया, उस डेटा से फिर उन्होंने जो फाइंडिंग्स निकाली वो ये थी कि बहुत सारे दुनिया के जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, स्टेट्समैन हैं, कोई प्राइम मिनिस्टर है, कोई बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उनकी ऑफशोर कंपनीज हैं पनामा में, ताकि वो अपने टैक्स बचा सकें। इस तरह बहुत सारे हमारे और भी बड़े बड़े स्कैंडल जो एक्सपोज किए हैं जर्नलिज्म बहुत साफियों ने, तो वो बड़े बड़े नाम हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे पास मौजूद हैं। तो खबर एक ही होती है, जब वो खबर निकलती है पूरी दुनिया उसको पीटती है, तो उस वो वाला जर्नलिज्म का जो स्कोप है वो आज भी बरकरार है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ क्या हो रहा है कि हम इवेंट्स की रिपोर्टिंग के पीछे पड़ गए हैं। हम जस्ट उसने कहा उसने ये कह दिया, ये वहां पे लाइव चल रहा है वो दिखा दिया। इस इज जर्नलिज्म, इट इज नॉट प्योर जर्नलिज्म। प्योर जर्नलिज्म इज ऑल अबाउट एक्सप्लोरिंग द अनएक्सप्लोर्ड। तो जिसको वो स्किल आती है उसको वही असल जर्नलिस्ट है, और वही उसके लिए भी मुसीबतें भी आएंगी डेफिनेटली। जब आप किसी करप्शन को एक्सपोज करेंगे, जब आप पावरफुल इलीट का गिरेबान पकड़ेंगे, तो भी डेफिनेटली प्रेशर आएगा, आपको प्रेशर भी उसको भी बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो वही असल साफी है जो प्रेशर में रह के काम करता है और जो सच बोलता है, ना कि कंप्रोमाइज होके अपनी पार्टी पोजिशन क्लियर कर ले और पार्टी का एक नुमाइंदा बन के रह जाए, वो जर्नलिज्म नहीं है। Everything what is being reported is not journalism. ये public listening है। We are not supposed to be a PROs. Journalist PRO नहीं है। किसी सियासतदान की प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर कर लेनी, उसका उसकी स्टेटमेंट चला देनी, ये जस्ट एक पब्लिक लिसनिंग है। आप उसकी उसको प्रमोट कर रहे हैं, जो कि जर्नलिज्म नहीं है। जर्नलिज्म है कि आपने गिरेबान पकड़ना है उन लोगों का जो के करप्शन कर रहे हैं, जो इस मुल्क के साथ, इस मुआशरे के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं, जो जुल्म कर रहे हैं, उनको एक्सपोज करना और मजलूम की आवाज उठाना और सच का साथ देना, ये जर्नलिज्म है।
1: ये ड्यूटीज है जर्नलिज्म की। और बहुत खूब सर आपने समझाया कि जर्नलिज्म क्या होती है, ना सिर्फ एक खबर को लेके उससे प्रेजेंट कर देना खबर, वो नहीं होती, बल्कि फैक्ट चेकिंग, रिसर्च और उसमें गहराई में जाके काउंटर, अपने आप के साथ काउंटर आर्ग्यूमेंट करके फिर एक रिजल्ट निकाल के उसे रिप्रेजेंट करना, वो खबर होती है। सर थोड़ा सा मीडिया के हम अंदर चैनल्स में जरा थोड़ा सा जाते हैं, तो टिकर्स वगैरह, क्योंकि आजकल नौजवान नस्ल को अवेयर करना बहुत जरूरी होता है कि टिकर्स क्या हैं, क्योंकि जो हमारे सामईन हैं उनको आइडिया होना चाहिए कि टिकर्स क्या हैं, किस तरह काम करते हैं। चलते हैं छोटे से म्यूजिकल ब्रेक की तरफ, सुनते रहिए FM 92.6 UCP की दुनिया।

0: Broadcasting from University Studios, where knowledge is empowerment. This is 92.6.
1: वेलकम बैक सामईन, आप सुन रहे हैं FM 92.6 UCP की दुनिया। और आज हम बात कर रहे हैं कि मीडिया लिटरेसी क्या है, मीडिया किस तरह काम करता है और किस तरह मीडिया में हमें अपना रोल जो है वो प्ले करना चाहिए। और इसी पे बात कर रहे थे हेड ऑफ डिपार्टमेंट फैकल्टी ऑफ मीडिया एंड मैस कम्युनिकेशन डॉक्टर आतिफ अशरफ साहब। सर बहुत शुक्रिया। सर बताइएगा कि एक मीडिया स्टूडेंट को किस सेमेस्टर में किस टाइम मीडिया की प्रैक्टिस स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्या 7वें सेमेस्टर के बाद, 8वें के बाद या फिर पहले?
2: देखिए बात यह है कि जिसका पैशन जर्नलिज्म है और जो करना चाहता है ना, वो इस डिग्री स्टार्ट करने से पहले भी स्टार्ट कर सकता है। ये जरूरी नहीं है कि इसकी प्रैक्टिस के लिए आपको किसी इदारे से मुंसलिक होना ही लाजमी है। इसकी प्रैक्टिस आप आजकल के दौर में आराम से घर बैठ के स्टार्ट कर सकते हैं।
1: सही।
2: सबसे पहली बात जो मैं हमेशा बात करता हूँ स्टूडेंट से कि जर्नलिज्म बेसिकली क्या है, सबसे पहली चीज ये है कि आपके पास एक नोज फॉर न्यूज होनी चाहिए। आपके पास वो स्मेल आपको करनी आनी चाहिए कि खबर असल में है क्या
1: है क्या।
2: जब आपने खबर को स्मेल कर लिया कि ये आइडिया ये खबर हो सकती है, तो उसके बाद सेकंड स्किल है कि आप उसके ऊपर रिसर्च करें, उसको एक्सप्लोर करें कि यार आइडिया जो मुझे आया कि ये वाकया कि इस आइडिया के ऊपर पहले कितना काम हुआ है और ये आइडिया है क्या, उसके बैक स्टोरी समझें। बैक स्टोरी होती है कि उसका कॉन्टेक्स्ट देखें, उसका बैकग्राउंड देखें, जो जो उस आइडिया के साथ मुंसलिक स्टेक होल्डर्स हैं उनको स्टडी करें। ठीक है, जब आप स्टडी कर लेंगे देन आपका आइडिया रिफाइन होगा। उसके बाद अगला स्टेप क्या है कि अगला स्टेप है आपने न्यूज हंट स्टार्ट करना है। आप मुतलका रेलिवेंट स्टेक होल्डर्स के पास जाएं, रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स तलाश करें, उनके इंटरव्यूज करें, डिग आउट करें, फैक्ट्स को डिग आउट
1: निकालना शुरू,
2: एट्रीब्यूट करें जो मैं फैक्ट्स देख रहा हूं कि वैलिड है, मुस्तनद है कि नहीं है। ये करने के बाद जब आपके पास एक प्रॉपर डेटाबेस आ जाएगा देन उसका अगला स्टेप है रिपोर्ट राइटिंग का। रिपोर्ट राइटिंग के लिए आपके पास राइटिंग स्किल्स होनी चाहिए, उसके लिए आपकी लैंग्वेज स्ट्रांग होनी चाहिए।
1: उर्दू वो
2: ठीक है, उर्दू कर लें, इंग्लिश कर लें, लेकिन मेनली मीडिया उर्दू में, लिहाजा उर्दू में मैं समझता हूँ ज्यादा बेहतर है कि आप उर्दू के अंदर लिखना सीखें, जर्नलिस्टिक राइटिंग सीखें। उसके लिए जो बेस्ट तरीका है वो आप अखबार पढ़ें। जब आप रीड करेंगे आपको लिखना भी आ जाएगा। इस तरह जब आपने एंकर बनना है, टीवी के लिए बोलना है, तो आप एंकर्स को सुने, रिपोर्टर को सुने, आपको बोलना आ जाएगा। तो लिखा हुआ स्क्रिप्ट जो अखबार के अंदर खबरें पड़ी लिखी हुई हैं, उन खबरों को पढ़ें, देखें स्ट्रक्चर क्या है, लीड क्या होती है, उसकी सुपर लीड क्या होती है, इंट्रो कैसे लिखा जाता है, 5W1H क्या होते हैं, एट्रीब्यूशंस क्या होती हैं, खबर बैलेंस कैसे किया जाता है, खबर का जो नेट ग्राफ कैसे लिखा जाता है। ठीक है, तो बेसिकली वो जो तमाम खबर का स्ट्रक्चर है वो आप आराम से अपनी कैपेसिटी बिल्ड कर सकते हैं। आजकल तो ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स भरे पड़े हैं, यूट्यूब के ऊपर भी, एडेक्स के ऊपर भी डिफरेंट कोर्सेज आप कर सकते हैं। तो जो ट्रेडिशनल जो जर्नलिज्म है वो यही है कि आपने जब आपके पास एक खबर स्मेल करते हैं देन रिसर्च स्किल्स आपकी अपनी है, आपको हेल्प आउट करेंगे बहुत सारे टूल्स, AI के टूल्स हैं जो आपको रिसर्च करने में हेल्प आउट करेंगे, डिजिटल मीडिया के बहुत सारे टूल्स हैं जो आपको खबर के सोर्स तक लेके जाएंगे, डाटा जर्नलिज्म के टूल्स मौजूद हैं, ओपन सोर्स डाटा अवेलेबल है पाकिस्तान के अंदर, जो बहुत सारी चीजें आप देख सकते हैं, क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो जब आप वो कर लेंगे तो रिपोर्ट राइटिंग के साथ साथ जब आपको लैंग्वेज की स्किल्स, ये ओवरनाइट नहीं आएंगे आपको ना, ये लिख के आपको लिखने के बाद टाइपिंग भी सीखें उर्दू टाइपिंग, बिकॉज आजकल जर्नलिज्म सारी कंप्यूटर्स के ऊपर हो रही है। अगर आपको उर्दू टाइपिंग नहीं आती तो आप मिसफिट हैं। अगर आप रिपोर्टर हैं, एडिटर हैं, एंकर हैं, उर्दू टाइपिंग इज अ मस्ट, बिकॉज जब आप टाइपिंग करेंगे, टाइपिंग करके ही आपका प्रॉम्प्टर बनेगा, टाइपिंग से ही पैकेज का स्क्रिप्ट बनेगा, टाइपिंग से ही आपका इंट्रो बनेगा, तो टाइपिंग के बगैर हैंड रिटन कोई चीज नहीं
1: है।
2: तो टाइपिंग थोड़ा सा सीखें, फिर उसके अलावा आप डिफरेंट टूल्स देखें, मसलन डिजाइनिंग के टूल्स हैं, एडिटिंग के टूल्स हैं, उनको देखें, कैमरा कैसे काम करता है, कैमरे के फ्रेम क्या होते हैं, कंपोजिशन क्या होती है, स्टोरी को रिकॉर्ड कैसे करना है, इंटरव्यू रिकॉर्ड कैसे करना है। ये मल्टीपल स्किल्स है जो कि आपको आराम से घर बैठ के सीख लेनी। जब आपको उसके पास स्किल्स आ जाएंगी उसके बाद इफ यू हैव स्किल्स तो छोड़ दें, अगर आपको कोई मीडिया उस चांस नहीं भी देता, जस्ट स्टार्ट योर यूट्यूब चैनल, स्टार्ट योर फेसबुक पेज, स्टार्ट योर इंस्टाग्राम पेज, वहां पे कंटेंट डालते रहें। आपकी डिग्री मुकम्मल होने से पहले इवन के मैं कहता हूँ आई कैन चैलेंज, अगर आप कंसिस्टेंट रहें, आई कैन चैलेंज विद इन 1 ईयर यू विल बी अर्निंग एज मच एज यू कुड हैव इमेजिंड। ठीक है, और आहिस्ता आहिस्ता जब आपकी एक फेस आपका रजिस्टर हो जाएगा ऑन सोशल मीडिया, आपके पेज, आपका यूट्यूब चैनल अगर वो रजिस्टर हो गया, उसकी शिनाख्त बन गई, देन आफ्टर वंस योर डिग्री इज कम्प्लीटेड आफ्टर फोर ईयर, तो चार साल से पहले पहले आपको बहुत सारे क्लाइंट्स अप्रोच कर सकते हैं,
1: बिल्कुल
2: बहुत सारे चैनल्स अप्रोच कर सकते हैं बेस्ड ऑन योर स्किल्स, और स्किल आपकी आपने खुद डिसाइड करनी है,
1: बिल्कुल
2: आपकी रिपोर्टिंग स्किल्स हैं, आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स हैं, आपकी ब्लॉगिंग की स्किल्स हैं, आपकी एआई की स्किल्स हैं, आपकी कंटेंट क्रिएशन की स्किल्स हैं, इट्स ऑल अप टू यू। हमारे दौर में क्या था, हमें मौका चाहिए था, कोई मौका दे, चांस दे,
1: मौका दे,
2: आजकल मौके सामने बैठे हुए हैं,
1: मौके तो आप
2: वो स्किल चाहिए आपको, वो स्किल आपको चाहिए, स्किल है उसको एग्जीबिट करें, स्टार्ट करें, अल्लाह मालिक आपको जो है ना वो बहुत सारा, और बात यह कि काम खुद सिखाएगा मुझे कैसे करना है।
1: यस,
2: सबसे बड़ा बॉस काम खुद होता है जो आप कर रहे होते हैं, और आप फिर नेटवर्किंग डेवलप करें, लाइक माइंडेड लोगों के पास बैठे सीखें, टीचर से सीखें, प्रोफेशनल से सीखें, पूछिए मैं कैसे आगे बढ़ूं, तो इस तरह आपको उनके साथ अटैच होंगे, नेटवर्किंग से बहुत आपका फायदा होगा, आपको मौके मिलेंगे, बहुत सारे लोग आपको काम दे सकते हैं, तो ये वो स्किल है, अगर आपके पास नियत है, स्किल है, अगर आप करना चाहते हैं तो जस्ट यू नीड अ मोबाइल फोन, यू नीड अ लैपटॉप एंड दैट्स इट।
1: Okay.
2: आपकी मुकम्मल प्रोडक्शन हाउस आपका मोबाइल फोन
1: है, मोबाइल
2: स्टार्ट इट एंड डू व्हाट एवर यू वांट इन जर्नलिज्म।
1: बहुत खूब, बहुत खूब, और अगर आपका टारगेट सेट है, आपने पैशनेट है, तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं, आप सितारों पे कमंद भी डाल सकते हैं, आप इकबाल के शाहीन भी बन सकते हैं, तो टारगेट आपका होना बहुत जरूरी है। चलते हैं छोटे से म्यूजिकल ब्रेक की तरफ, सुनते रहिए FM 92.6 UCP की दुनिया।

0: 92.6 बोरियत को भगा दो।
1: वेलकम बैक सामईन, आप सुन रहे हैं FM 92.6 UCP की दुनिया। और आज के प्रोग्राम में हमें हेड ऑफ डिपार्टमेंट मीडिया एंड मैस कम्युनिकेशन डॉक्टर आतिफ अशरफ साहब ने ज्वाइन किया है, और उनसे हम बात कर रहे थे कि मीडिया चैनल के अंदर जो है वो किस तरह के मामलात होते हैं, टिकर्स किस तरह चलते हैं, क्या होते हैं, प्रोग्रामिंग का सिस्टम क्या होता है। तो सर बताइएगा कि टिकर्स जो हैं वो क्या होते हैं, किस तरह चलाए जाते हैं और क्या सिस्टम होता है उसका।
2: नहीं, जिस तरह होता है ना कि आपको क्राइम होता है थाने में, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट FIR होती है।
1: yes.
2: तो समझ लगे खबर का पहला स्टेज टिकर है। टिकर क्या होता है कि टिकर के लिए, चूंकि टीवी इज अ ऑडियो विजुअल मीडियम, वहां पे आपने एक खबर को प्रोड्यूस करने के लिए आपको प्रॉम्प्टर चाहिए, उसकी स्क्रिप्टिंग चाहिए, उस कैमरा चाहिए, फिर उसकी ट्रांसमिशन चाहिए, एक एंकर चाहिए, एक पूरा एक आपको एक PCR चाहिए, तब जाके प्रॉम्प्टर के साथ फिर विजुअल्स भी चाहिए, एंकर की आवाज जाएगी, फिर उसके बाद ये पूरा प्रोसेस में टाइम लगता है। लेकिन टिकर क्या है, टिकर जस्ट एक टेक्स्ट है जो कि टीवी के बॉटम के ऊपर जैसे खबर आती है आप उसको टाइप करते हैं और वो टेक्स्ट स्क्रीन के ऊपर आ जाता है। जस्ट एक इनके फौरन ना इसमें किसी एंकर की जरूरत है, ना ऑडियो की ना वीडियो की, जस्ट एक टेक्स्ट के फॉर्म में आप खबर ब्रेक कर देते हैं। अक्सर आपको जब खबर ब्रेक होती है ना, सबसे पहले जो टिकर की फॉर्म में इसको टेक्स्ट आ रहा होता
1: है, बिल्कुल,
2: उसके बाद वो टिकर अपडेट होते रहते हैं, उसके बाद फिर 5 मिनट बाद, 6 मिनट बाद या 3 मिनट बाद फिर वो टिकर एंकर के पास जाते हैं, एंकर रेडी होती है, टिकर को पढ़ती है या पढ़ता है, फिर एक पूरा सिस्टम के साथ फिर वो ब्रेक होती है, फिर वो ब्रेकिंग न्यूज चलती है, फिर वो साथ रिपोर्टर का पेपर चल रहा होता है, फिर वो उसके ऊपर मजीद डिटेल दे रहा होता है। तो टिकर बेसिकली वो टेक्स्ट की फॉर्म में एक ऐसा फॉर्मेट है जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन के तौर के ऊपर टीवी की स्क्रीन के ऊपर आप डिस्प्ले करते हैं।
1: मीडिया की जो FIR है वो टिकर है आपके मुताबिक। और सर टेलीप्रॉम्प्टर की आपने बात की, टेलीप्रॉम्प्टर तो बहुत जरूरी होता है, वो कैब और आपकी बहुत ज्यादा चीजें जो है वो उसमें क्लियर कर देता है, समझ आ रही होती है, तो टेलीप्रॉम्प्टर क्या है ये भी बताना जरूरी है।
2: देखिये, अक्सर हम छोटे थे ना जब हम टीवी देखते थे, हमें बड़ा ताज्जुब होता था कि एंकर सारी खबरें जुबानी कैसे याद कर लेती है।
1: ऐसे ही,
2: लेकिन बाद में अंदाजा हुआ यार ये कोई भी एंकर खबर जुबानी नहीं पढ़ता, बल्कि सामने लिखा हुआ स्क्रिप्ट होता है और जो स्क्रीन के ऊपर चल रहा होता है। कोई भी खबर जो एंकर आपको पढ़ता हुआ नजर आ रहा है या आ रही है, वो बेसिकली न्यूज रूम ने उस खबर को प्रॉपरली जर्नलिस्टिक राइटिंग में, स्क्रिप्ट को प्रॉपर जर्नलिस्टिक राइटिंग में लिखा हुआ है। जब वो स्क्रिप्ट लिखा जाता है फिर उसको एडिट किया जाता है, कुछ डेस्क के ऊपर लोग कॉपी, जिनको कॉपी एडिटर्स बोलते हैं, रिपोर्टर खबर डालता है, फाइल करता है, देन कॉपी एडिटर्स उस खबर को एडिट करते हैं। एडिट से मतलब यह है कि इस तरह से एडिट करते हैं कि वो उसका स्क्रिप्ट कन्वर्सेशनल
1: हो जाता है,
2: हो जाए, ताकि एंकर को पढ़ने में प्रॉब्लम ना हो, बिकॉज राइटिंग की लैंग्वेज डिफरेंट है और टीवी की लैंग्वेज डिफरेंट
1: है। यस,
2: जिस तरह उस तरह से लिखा जाता है स्क्रिप्ट प्रॉम्प्टर के लिए, जैसे मैं और आप बात कर रहे हैं कन्वर्सेशनल स्टाइल के अंदर, तो जब उस स्टाइल में स्क्रिप्ट एडिट होगा फिर वो एंकर के सामने आएगा, फिर एंकर स्क्रोल करेगा, एंकर अपनी स्पीड के मुताबिक उस टेक्स्ट को थ्रू प्रॉम्प्टर पढ़ेगा और वो देख, प्रॉम्प्टर मेरा होगा लेकिन प्रॉम्प्टर के पीछे कैमरा लगा होगा, तो इस तरह फील आएगी जैसे वो खुद कैमरे में देख के पढ़ा और जुबानी पढ़ रहा है। और इसके लिए एंकर की भी बड़ी उसको एक्सरसाइजेस करनी पड़ती है कि वो लगे ना कि वो रीडिंग कर रहा है,
1: रीडिंग कर रहा है,
2: उसके लिए प्रॉपर उसकी ट्रेनिंग होती है, उसकी प्रैक्टिस कराई जाती है, ताकि वो जब पढ़े तो लगे इस तरह कि वो खुद नेचुरल वे में ऑर्गेनिकली पढ़ रहा है, ना कि ये रीड कर रहा है प्रॉम्प्टर से।
1: बिल्कुल, रीड नहीं कर रहा और डिलीवर जो कर रहा है वो अपने, यानी कि उसने सोचा हुआ है और वो आपको सिखा रहा है। और न्यूज लेते किस तरह है, क्योंकि हमने चलाने की भी बात कर ली, हमने FIR भी दे दी न्यूज की, न्यूज गैदर कैसे की जाती है? एक रिपोर्टर को अगर खबर चाहिए, फॉर एग्जाम्पल यूनिवर्सिटी में ही हमें अगर किसी प्रेजेंटेशन के लिए, किसी असाइनमेंट के लिए खबर चाहिए, तो एज अ रिपोर्टर हमें किस तरह न्यूज को गैदर करना होगा?
2: इसमें दो कैटेगरीज हैं, एक कैटेगरी है इवेंट्स रिपोर्टिंग की, जिसमें मैंने पहले जिक्र किया, बाज़ुकात बल्कि हर दफा होता है कि चैनल के अंदर रात को 12 बजे तक या 1 बजे तक मुख्तलिफ शहरों से डिफरेंट डे प्लान आ रहे होते हैं, मतलब मुल्तान के अंदर, कराची के अंदर, लाहौर के अंदर, पेशावर के अंदर जो अगले दिन एक्टिविटीज होनी है वो मीडिया को पहले इन्फॉर्म कर दी जाती हैं, जो शेड्यूल्ड एक्टिविटीज हैं, जिस तरह किसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, किसी ने कोई कोई इवेंट होना है किसी होटल में, कोई मैच है, वो ऑलरेडी पहले इन्फॉर्म कर दिया जाता है ताकि मीडिया वहाँ पहुँच के कवर कर ले। तो ये डे प्लान के अंदर जो इवेंट शेड्यूल्ड हैं उनकी एक पूरी लिस्ट आ जाती है वो अप्रूवल के लिए। उसके अलावा जो रिपोर्टर खुद करना चाह रहा है, दूसरी ऑप्शन में, लेट्स सपोज रिपोर्टर ने जू के अंदर एक्टिविटी कवर करनी है, या उसने कौमी असम्बली का इजलास कवर करना है, या उसने सुबह असम्बली का इजलास कवर करना है, या उसने किसी एक इंतहाई लो लाइंग इलाके में टूटी हुई गलियों की कवरेज करनी है जहाँ पे लोग मसाइल का शिकार है, तो वो अपना आइडिया डालेगा, आइडिया पिच करेगा, वो भी डे प्लान का हिस्सा होता है। इसी तरीके से कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं जो कि आपको असाइन किए जाते हैं न्यूज रूम की तरफ से। लेट्स सपोज रिपोर्टर खुद से कुछ नहीं लेके आ रहा, फिर न्यूज रूम खुद असाइन करेगा। यार आजकल लेट्स सपोज मैं कहता हूँ यार बजट का सीजन आ रहा है, तो बजट के लिए हमें लोगों की वॉक्स पॉप्स चाहिए कि लोग महंगाई से कितना तंग हैं, तो यहाँ से फिर आप असाइन करेंगे या फलाने मुल्तान से, लाहौर से, कराची से महंगाई के ऊपर लोगों से वॉक्स पॉप्स करो, मीन उनसे कमेंट्स लेके आओ कि वो क्या समझते हैं, ठीक है। तो ये वो तीन चार जो शेड्यूल्ड इवेंट ऑलरेडी आते हैं जो रिपोर्टर एक्टिवली करता है, तीसरा जो न्यूज रूम उन्हें साइन करता है, तो इस तरह वो खबरें सारी एक एक लिस्ट आ जाती है। फिर उस खबरों की अप्रूवल जो कम्युनिटी अथॉरिटी है वो देती है, देन अगले दिन वो रिपोर्टर अपना अपनी असाइनमेंट के ऊपर काम करना स्टार्ट कर देता है। या कोई इसके अलावा भी एक खबरों का सोर्स है, अचानक कोई हादसा हो गया कि बम ब्लास्ट हो गया, फिर फौरन जो टीमें मोबाइल होती है वहां पर पहुंच जाती है, या कोई रिपोर्टर फर्दर एक स्टोरी पे काम कर रहा है पिछले चार दिन से, उस पर काम करता रहेगा, फिर वो उसकी एक्सक्लूसिव स्टोरी होगी। तो डिफरेंट मल्टीपल मीन्स हैं, कुछ सोर्सेज आए हैं, कुछ आपके पास मॉनिटरिंग के ऊपर बहुत सारी न्यूज एजेंसीज की फीड आ रही होती है, बाकी अदर न्यूज चैनल से चीजें आ रही होती हैं, न्यूज एजेंसीज हैं, टीवी चैनल्स हैं, प्रेस रिलीज हैं, हैंड आउट्स आपके पास आते रहते हैं, तो बहुत सारे सोर्सेज हैं। लेकिन गेट कीपिंग आपने करनी है, फिल्ट्रेशन आपने करनी है, कौन सी खबर आप समझते हैं कि एडिटोरियली ये खबर सबसे बेस्ट है, ये चलनी चाहिए, देन पिक एंड चूज आप खुद कर लेते हैं।
1: बिल्कुल, बहुत खूब और बहुत बेहतरीन अंदाज से सर आपने समझा दिया कि खबर को किस तरह लेना है। अगर बतौर स्टूडेंट भी आपको चाहिए तो आप खुद बना सकते हैं खबर, आप ढूंढ सकते हैं, आप रिसर्च कर सकते हैं, आप अपनी स्टोरी खुद जनरेट कर सकते हैं। तो सर सहाफियों का दूसरा घर कहा जाता है प्रेस क्लब को, तो प्रेस क्लब की क्या अहमियत होती है मीडिया के अंदर?
2: देखिए प्रेस क्लब एक कम्युनिटी है जो कि जितने भी सहाफी हैं वो वहाँ एक 9 to 5 जॉब से, या जो रिपोर्टर्स हैं जो फील्ड से थोड़ा सा टेंस माहौल में जब काम करते हैं तो बहुत ही प्रेशर वाला काम होता है, तो वहाँ पे उनको एंटरटेन किया जाता है, वहाँ बैठ के एक तो वहाँ पे नेटवर्किंग डेवलप होती है, एक दूसरे के हालातों वाकयात का पता चलता है, वहाँ पे खबरें भी शेयर हो रही होती हैं, वहाँ पे वो कुछ रिक्रिएशनल एक्टिविटीज कर रहे होते हैं, वहाँ पे लेट स्पोर्ट्स हैं, बैडमिंटन खेलते हैं, कैरम खेलते हैं, बिलियर्ड खेलते हैं, वहाँ पे जिम है, वो जिम करते हैं, वहाँ पे खाना चाना खाते हैं सब्सिडाइज्ड रेट के ऊपर, और एक रिलैक्स होते हैं वहाँ पे, एक नेटवर्किंग भी है, शेयरिंग भी है, फैसिलिटेशन भी है, और वहाँ पे क्लब एक जो क्लब को सब्सिडाइज करता है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, तो यहाँ पे साफियों को फिर एक बहुत एक बजट के साथ उनको फैसिलिटेट किया जाता है ताकि वो साफी जो है लाहौर के जो साफी हैं वहाँ पे मिल बैठ कर एक थोड़ा सा एक अच्छा एक क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सके,
1: अच्छा कर सके, और खबरें जो है बड़े आसानी तरीके से इंजॉय करते करते जो है वो शेयर कर सकें। और ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी फील्ड के अंदर जो है आपको रिलैक्स होना, फिर क्योंकि एक ये तो फील्ड भी कुछ इस तरह की है कि आपको हर टाइम एक्टिव रहना पड़ता है मीडिया के अंदर। और सर आखिर पे हमें एक पैगाम दीजिएगा लाजमी आजकल के नौजवान नस्ल को कि जो मीडिया है उसको किस तरह इस्तेमाल करना है, क्योंकि हम लोगों के पास जो है वो अप्रोच तो आ गई मीडिया की, अब इस्तेमाल किस तरह करना है उसका?
2: देखिए मीडिया के अंदर जो है ना इस्तेमाल किस तरह, मीडिया का यूज बहुत इंपॉर्टेंट आपने क्वेश्चन किया है। देखिए एक तो हम मीडिया कंज्यूम कर रहे हैं, रैंडमली हमारे पास मोबाइल फोन है, हम फीड स्क्रॉल कर रहे हैं, हम टिकटॉक पे हैं फीड स्क्रॉल किए जा रहे हैं, हम इंस्टाग्राम पे हैं फीड अपनी जो फीड है स्क्रॉल किए जा रहे हैं, इस तरह फेसबुक ट्विटर के ऊपर हम अनइंटेंशनली हम जो कंटेंट हमारे सामने आ रहा है, जो एल्गोरिदम डिसाइड कर रहा है हमने क्या देखना है, हमारी उस एंगेजमेंट हैबिट्स को देखते हुए, हमारे इंटरेस्ट को देखते हुए वो चीज़ हमारे पास आ रही होती हैं। तो मैं ये समझता हूँ ये टाइम जाया करने वाली बात है, ये डिसाइड आप लोगों ने करना है कि आपने क्या देखना है, इट्स यू टू डिसाइड कि कौन सा कॉन्टेंट कंज्यूम करना है, एवरी कॉन्टेंट इज नॉट वर्थ ऑफ कंजप्शन। इसके लिए सेकेंड स्टेप के ऊपर देखिए मैं हमेशा ये बात कहता होता हूँ कि मीडिया का जो यूज है, इसमें मैं बात करूँ मेन स्ट्रीम मीडिया की, वो मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर जो लोग बैठे हैं वो प्रोफेशनल्स हैं।
1: एग्जैक्टली
2: वहां से आप जो न्यूज देख रहे हैं उनमें फेक न्यूज के चांसेस तकरीबन ना होने के बराबर है, क्योंकि वो ऑथेंटिक खबर होती है विद वैलिड रिसोर्सेज के साथ, प्रॉपर एट्रीब्यूशन के साथ, वो फिल्टर होके डेस्क से, रिपोर्टर से, फिर वो बहुत सारे मल्टीपल गेट कीपर्स हैं, तब वो खबर स्क्रीन तक पहुंचती है। नो डाउट कि इसमें बहुत सारा सेंसरशिप भी आ जाता है, कंट्रोल भी आ जाता है, लेकिन वो कुछ केसेस में जो कि यू समझ लेंगे हार्ड न्यूज के केसेस हैं,
1: पॉलिटिकल न्यूज के केसेस
2: हैं, लेकिन जो आप जो कंटेंट आप कंज्यूम कर रहे हैं मेनस्ट्रीम मीडिया के ऊपर, लाइक मैं ये नहीं कह रहा कि मैं पॉलिटिकल कंटेंट की थोड़ी सी इसमें एग्जेम्पशन देता हूं, बहुत सारे केसेस के अंदर सियासी जो कंटेंट है उसको हम न्यूट्रल नहीं कह सकते, क्योंकि वहाँ मल्टीपल फैक्टर्स हैं, यहाँ पे उसको डिस्कस नहीं करने जा रहा, बिकॉज दिस इज एन एकेडमिक रेडियो, नॉट अ मेनस्ट्रीम न्यूज चैनल। तो लेकिन यह कि जो अदर जो हमारे सेगमेंट ऑफ सोसाइटीज हैं, सोशल इश्यूज हैं, बाकी कल्चरल इश्यूज हैं, बाकी और जो लोगों के इश्यूज हैं, लेट्स सपोज किसी की गली नहीं बन रही, गली में पानी खड़ा, गटर बंद है, तो मीडिया जो कवर कर रहा है उसकी गली को, लोगों के तासुरात दे रहा है, वो रियलिटी को रिफ्लेक्ट
1: कर रहा है,
2: पब्लिक ओपिनियन को दे रहा है। तो वहां पे यहाँ पे बहुत सारे फिल्टर से खबर निकल के आती है, वहां पे एथिक्स का ख्याल रखा जाता है, जर्नलिज्म के एथिक्स का, लेट्स ब्लड नहीं दिखाना किसी का, किसी की कंसेंट के बगैर किसी का चेहरा नहीं दिखाना, किसी को आपने बगैर कंसेंट के वो ऐसी बात नहीं करनी जो उसने मना किया हो कि ऑन

0: सोशल मीडिया यहाँ पे अनफिल्टर्ड कंटेंट आ रहा है,
1: बिल्कुल
0: आप कुछ भी देख सकते हैं, कंटेंट सही है गलत है, सोर्स ठीक है गलत है, फेक है, ए जनरेटेड है, प्रोपेगेंडा है, फैब्रिकेटेड है, यू डोंट नो। उसके लिए इफ यू डोंट हैव प्रॉपर मीडिया लिटरेसी स्किल्स, देन आप उस कंटेंट को जो कंज्यूम करें उसको आप सच मानना स्टार्ट करते
1: हैं, शुरू
0: कर, और जब आप एक चीज को सच मानना स्टार्ट करेंगे फिर वैसी झूठी चीजें आप तक आना शुरू हो जाएंगी, फिर आप एको चैम्बर का शिकार हो जाएंगे, आप कहेंगे जो मैं सोचता हूँ वही चीज सही है और वही चीज मेरे सामने आने चाहिए,
1: बहुत को
0: इनकी जो काउंटरिंग जो जो जो काउंटर आर्गुमेंट है जो कि अदर साइड ऑफ द कॉइन है आप उसको सुनना ही नहीं चाहेंगे, इसलिए फिर आप एक एक्सट्रीमिस्ट अप्रोच का शिकार हो जाएंगे। तो न्यूज चैनल्स के अंदर क्या होता है कि वहां पे आपको फिल्टर्ड कॉन्टेंट मिलता है जो प्रोफेशनल्स उस कंटेंट को तैयार करते हैं और प्रोफेशनल्स के थ्रू ही आप तक कंटेंट पहुंचता है। तो जो भी मेनस्ट्रीम मीडिया का कंटेंट है रिगार्डिंग नेशनल इश्यूज इंटरनेशनल इश्यूज आज भी वही ऑथेंटिक है और वही चीज ही आपको देखनी चाहिए। आप देखिए जितना भी आप मीडिया देखते हैं, अल जजीरा है, सीएनएन बीबीसी है, या इवन का डॉन है, पाकिस्तान का जियो है, एक्सप्रेस है, दुनिया है, इन तमाम मीडिया के ऊपर चेक एंड बैलेंसेज है। अगर वो चीज गलत चलाएंगे देन दे हैव टू आंसर। सो मीडिया के यूज करने के हवाले से आपने विजिलेंट रहना है और ऑथेंटिक खबरें आज भी मेनस्ट्रीम मीडिया तक ही महदूद हैं, उन्हीं को लिफ्ट करता है सोशल मीडिया। अगर कोई आपको, हाँ हो सकता है कि बहुत सारी खबरें जो मेनस्ट्रीम मीडिया ना दे रहा हो लेकिन सोशल मीडिया पे आ रही हो वो सही भी हो, ऐसा हो भी होता भी है,
1: ऐसा होता है,
0: सेंसर होता है, वहां से देखते हैं
1: हम कई दफा हमारे सामने,
0: बिल्कुल एग्जैक्टली वो चीज वहां सेंसर होती है, यहाँ से आप देख लेते हैं लेकिन फिर भी वो ठीक है, ये नहीं कहता वो सब गलत है, बहुत सी ठीक भी है लेकिन उस वो ठीक कैसे है, यू नीड टू हैव मीडिया लिटरेसी स्किल्स to critically evaluate the content you are consuming.
1: बहुत खूब सर, आपने तो दरिया को कूजे में जो है वो बंद कर दिया और बहुत बेहतरीन अंदाज के साथ जो है हमें बता दिया है कि हर चीज़ आपके हाथ में है, मीडिया आपके हाथ में है, तो इस्तेमाल उसका किस तरह करना है और किसी भी चीज़ को इस्तेमाल करने के लिए उसके बारे में आपको अवेयर होना ज़रूरी है, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो आपके पास मोबाइल हो, चाहे वो सोशल मीडिया हो, तो हर चीज़ को जो है आपको जाँच पड़ताल करके फिर जाके ऑन एयर करना चाहिए। तो ये था हमारा आज का इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम फैकल्टी मीडिया एंड मैस कम्युनिकेशन। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज आपने टाइम दिया और उम्मीद करता हूँ सामईन आपने भी बहुत कुछ सीखा होगा, बहुत कुछ आपको यहाँ से पता लगा होगा कि मीडिया किस तरह काम करता है और कौन कौन सी इम्पैक्ट्स होते हैं मीडिया के। तो आज का प्रोग्राम अपने अख्ताम को पहुँचता है, सुनते रहिए FM 92.6 UCP की दुनिया।

0: मोबाइल डिवाइस की पीटीए से तस्दीक के मुतालिक जानने के लिए खरीदते वक्त सबसे पहले इसका 15 हिस्सों का IMEI नंबर *#06# डायल करके मालूम करें और फिर IMEI नंबर 8484 पर SMS करें या वेबसाइट से चेक कर लें कि ये डिवाइस पीटीए से तस्दीक शुदा है। PTA
1: 24/7 only on FM 92.6 UCP की दुनिया।

हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

0: यही है मेरी पहली आशिकी।
1: ये आवाज है लाहौर की, ये आवाज है यूसीपी की, तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

नशा न परेशानियां खत्म करता है न इसका सरूर हमेशा रहता है। ये एक लम्हे की कमजोरी है जो सारी जिंदगी का रोग बन जाती है। बातला इल्मी जहालत और हमाकत से शुरू होती है और सारे खानदान को तबाह कर देती है। ऐसी कोई खाने पीने लगाने या सरूर दिलवाने वाली अशिया का इस्तेमाल न करें जिसमें नशा हो। वालिदैन, असातिज़ा और दोस्त बच्चों पर नजर रखें। हंसी मजाक में की गई हरकत आपकी सांसें भी खत्म कर सकती है। नशे से इनकार, जिंदगी से प्यार। मंशियात की सरगर्मियों की रोकथाम के लिए हमारी हेल्पलाइन पर राबिता करें।

ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

मौसीकी के सुरोरताल सुरोरताल ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास सिर्फ FM 92.6 UCB की दुनिया।

ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

ये आवाज है लाहौर की, ये आवाज है यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

0: न्यूज।
1: मौसीकी चाहे आंसुओं का सफर हो, चाहे रक्स की दुनिया, दिल बुने मोहब्बत के आशियाने हो या फरागत का जमाना।
2: एक्सप्लोरिंग पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट अमारा माजिद और मेरे साथ है मेरे को होस्ट
3: आरजे फाद कुरैशी।
0: अस्सलाम वालेकुम, यू आर लिसनिंग टू एफएम 92.6 यूसीपी की दुनिया। आई एम नूरुल हुदा विद द लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट्स इन द इंग्लिश न्यूज बुलेटिन, ओनली ऑन वन प्लेस।

नशा न परेशानियां खत्म करता है न इसका सरूर हमेशा रहता है। ये एक लम्हे की कमजोरी है जो सारी जिंदगी का रोग बन जाती है। बातला इल्मी जहालत और हमाकत से शुरू होती है और सारे खानदान को तबाह कर देती है। ऐसी कोई खाने पीने लगाने या सरूर दिलवाने वाली अशिया का इस्तेमाल न करें जिसमें नशा हो। वालिदैन, असातिज़ा और दोस्त बच्चों पर नजर रखें। हंसी मजाक में की गई हरकत आपकी सांसें भी खत्म कर सकती है। नशे से इनकार, जिंदगी से प्यार। मंशियात की सरगर्मियों की रोकथाम के लिए हमारी हेल्पलाइन पर राबिता करें।

0: लोगे।
1: बच्चों के साथ जिंसी तशद्दुद अक्सर हमारे सामने हो रहा होता है, डरे नहीं और चीख के कहें।
2: खबरदार, छूना मना है।
3: मजीद तफसीलात के लिए राब्ता कीजिए 1099 पर।

0: न्यूज।
1: मौसीकी चाहे आंसुओं का सफर हो, चाहे रक्स की दुनिया, दिल बुने मोहब्बत के आशियाने हो या फरागत का जमाना।
2: एक्सप्लोरिंग पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट अमारा माजिद और मेरे साथ है मेरी को होस्ट
3: आरजे फाद कुरैशी।
4: अस्सलाम वालेकुम, यू आर लिसनिंग टू FM 92.6 UCP की दुनिया। आई एम नूरुल हुदा विद द लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट्स इन द इंग्लिश न्यूज बुलेटिन, ओनली ऑन वन प्लेस। देन स्टे ट्यून्ड 92.6

अगर आपका कानूनी हक हुकूमत पंजाब के किसी सरकारी इदारे में ताखीर या बद इंतजामी का शिकार है और ये किसी अदालती कार्रवाई का हिस्सा नहीं, तो फिर आप दफ्तर मोहतसिब पंजाब से फौरी राब्ता करके अपना कानूनी हक जल्द हासिल करें। दफ्तर मोहतसिब सूबाई हुकूमत से मुतालिक अवामी तकालीफ और शिकायात के हल के लिए 36 अजला में सरगर्म अमल है। आप अपनी दरख्वास्त दफ्तर मोहतसिब पंजाब को बजरिया डाक, वेबसाइट, मोबाइल पोर्टल या मुतल्लिका जिला के मोहतसिब ऑफिस में बजाते खुद जमा करवा सकते हैं। मजीद मालूमात और रहनुमाई के लिए मोहतसिब ऑफिस की हेल्पलाइन 1050 पर राब्ता करें। अवामी हक का मुहाफिज दफ्तर मोहतसिब पंजाब।

0: Are you tired of feeling lazy and bored? Don't worry. That's why we are here. We are UCP Ki Duniya, FM 92.6.
1: मुझे डायबिटीज, मैं तो बड़ा फिट हूँ। डायबिटीज तो मोटे लोगों को होती है।
2: हम तो खालिस खुराक खाते हैं, हमें नहीं होगी डायबिटीज।
3: डायबिटीज वो तो मीठा खाने से होती है, इसीलिए मीठा खाती नहीं।
1: डायबिटीज तो सिर्फ बुढ़ापे में होती है।
4: मैं भी यही सोचता था, मगर सच तो ये है कि पाकिस्तान डायबिटीज के हवाले से दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क है, इसीलिए अपनी सेहत पर गौर करें। अगर आपको इनमें से कोई भी अलामत महसूस हो रहे हो तो फौरन अपने डॉक्टर से मशवरा करें। डायबिटीज वसाइल और आमदनी से नहीं बल्कि एक्शन से कंट्रोल हो, यानी मतवाजन गजा, रोजाना एक्सरसाइज और डॉक्टर की तजवीज की हुई दवा। याद रखिए, अगर डायबिटीज से जीतना है तो वक्त पर एक्शन लेना है।

नशा न परेशानियां खत्म करता है न इसका सरूर हमेशा रहता है। ये एक लम्हे की कमजोरी है जो सारी जिंदगी का रोग बन जाती है। बातला इल्मी जहालत और हमाकत से शुरू होती है और सारे खानदान को तबाह कर देती है। ऐसी कोई खाने पीने लगाने या सरूर दिलवाने वाली अशिया का इस्तेमाल न करें जिसमें नशा हो। वालिदैन, असातिज़ा और दोस्त बच्चों पर नजर रखें। हंसी मजाक में की गई हरकत आपकी सांसें भी खत्म कर सकती है। नशे से इनकार, जिंदगी से प्यार। मनशियात की सरगर्मियों की रोकथाम के लिए हमारी हेल्पलाइन पर राबिता करें।

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

0: मुझे डायबिटीज? मैं तो बड़ा फिट हूँ, डायबिटीज तो मोटे लोगों को होती है।
1: हम तो खालिस खुराक खाते हैं, हमें नहीं होगी डायबिटीज।
2: डायबिटीज वो तो मीठा खाने से होती है, इसीलिए मीठा खाती नहीं।
0: डायबिटीज तो सिर्फ बुढ़ापे में होती है।
3: मैं भी यही सोचता था, मगर सच तो ये है कि पाकिस्तान डायबिटीज के हवाले से दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क है, इसीलिए अपनी सेहत पर गौर करें। अगर आपको इनमें से कोई भी अलामत महसूस हो रहे हो तो फौरन अपने डॉक्टर से मशवरा करें। डायबिटीज वसाइल और आमदनी से नहीं बल्कि एक्शन से कंट्रोल हो, यानी मतवाजन गजा, रोजाना एक्सरसाइज और डॉक्टर की तजवीज की हुई दवा। याद रखिए, अगर डायबिटीज से जीतना है तो वक्त पर एक्शन लेना है।
4: दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उगने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं, इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय फैकल्टी ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।
5: Sufi sings who? That which is, that which was, that which will be.
6: مسلمانی که داند رمز دین را، نساید پیش غیر الله جبین را. اگر گردون به کام او نگردد، به کام خود بگرداند زمین را. این رادیو FM 92.6 است. بشنوید جهان UCP.
2: آپ کی سماعتوں سے ٹکراتی یہ آواز UCP کی دنیا FM 92.6.